मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि तदनुसार 28 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 52 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

26 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमरीका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, इससे दोनों पक्षों की

बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, संसार में अधिकांश प्रेम स्वार्थ और अपेक्षाओं पर आधारित दिखाई देता है। सच्चा प्रेम तो वही है जिसमें निस्वार्थ सेवा, त्याग और समर्पण हो। सांसारिक रिश्ते समय और परिस्थितियों के साथ बदल सकते हैं। केवल ईश्वर का प्रेम और भक्ति ही सच्ची, अटल और शाश्वत मानी गई है। इसीलिए हमें क्षणिक मोह से ऊपर उठकर सत्य, प्रेम और मानवता का मार्ग अपनाना चाहिए। इन्हीं भाव पंक्तियों के साथ आइए आरंभ करते हैं भक्ति रचनाओं पर आधारित इस कार्यक्रम का। नाम है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

तब भक्ति और विनम्रता के भाव को जागृत करता हुआ ये भजन ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास का संदेश दे रहा है। श्रोताओं, अगर देखा जाए तो भक्त जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए किसकी शरण में जाता है? प्रभु की। प्रभु से प्रार्थना करता है। वो स्वीकार करता है कि ईश्वर की कृपा के बिना जीवन सागर को पार करना

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

श्रोताओं, विराम के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में। कर्म की गति अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी होती है। मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्म का फल कभी न कभी अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे कर्म सुख सम्मान और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। इसीलिए श्रोताओं, हमें सदैव सत्य, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम आराधना में आखिरी भजन। ये भजन भगवान राम और श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, विश्वास और विनम्र प्रार्थना को दर्शा रहा है। भक्त अपने दुख, चिंताओं और मन की व्यथा प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर रहा है। ईश्वर से जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन और कृपा की याचना है ये। सच्ची भक्ति से मन को शांति, साहस और आशा मिलती है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु को पुकारता है, श्रोताओं, प्रभु उसके पुकार अवश्य सुनते हैं। यही भाव इस भजन के माध्यम से आया।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए भर्तृहरि के नीत शतक से पाठ।
1: केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। बाजूबंद और चंद्रमा के समान उज्जवल मोतियों की माला, स्नान, चंदन का लेप, फूलों का श्रृंगार और संवारे हुए केश, ये सब मनुष्यों को इतना सुशोभित नहीं करते जितनी व्याकरण युक्त शुद्ध वाणी मनुष्य को शोभा बढ़ाती है। क्योंकि भूषण तो नष्ट हो सकते हैं पर वाणी रूपी भूषण सदैव जगमगाता रहता है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसुपूजिता नहि धनं विद्या विहीनः पशुः। विद्या मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाला और प्रच्छन्न धन है, छिपा हुआ धन है। विद्या ही भोग यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। परदेश में विद्या ही बंधु होती है। विद्या सबसे बड़ी देवी है। ख्यांतिश्चेद कवचेन किम अरिभिक्रोधोस्ति चेद देहिनाम ज्ञातिश्चेद।

0: अनलेन किं यदि सुहृद् दिव्योषधैः किं फलम्, किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमु धनैर्विद्या न विद्या यदि व्रीडा चेत् किं भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो उसे कवच की कोई जरूरत नहीं, यदि क्रोध है तो उसे किसी शत्रु की जरूरत नहीं, यदि जाति बांधव है तो अग्नि उसके पास स्वतः विद्यमान है, यदि मित्र हैं तो उत्तम औषधियों से उसे कोई लाभ नहीं, उत्तम औषधि उसके पास विद्यमान है, यदि दुर्जन है तो सर्प का क्या काम, निर्दोष विद्या हो तो धन की कोई जरूरत नहीं, और अगर मनुष्य में शांति हो तो गहनों से कोई लाभ नहीं, और सुंदर कविता हो तो राज्य की प्राप्ति से भी कोई लाभ नहीं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। सज्जन लोगों की संगति अनेक लाभों को देने वाली है, मूर्खता को समाप्त करती है, वचन में सत्यता लाती है, प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है और चित्त को प्रसन्न करती है, साथ ही संपूर्ण दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। इस प्रकार सज्जनों की संगति से क्या क्या लाभ नहीं मिलता, अर्थात सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं।
1: अभी आपने सुना भर्तृहरि के नीति शतक से पाठ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां, इस विषय पर डॉक्टर राम लखन पाल से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत।
1: किसान भाई, देखा खेती किसानी में उर्वरक का भाई जो प्रयोग किन जात है, जौन है, अगर ओहमा थोड़ा सा भी लापरवाही हो जाए तो जौन मेहनत किन के फसल उगाई जात बाटे वो पूरी चौपट हो जात है। तो जितना भी कृषि रक्षा रसायन बाटे उनके जौन प्रयोग बाटे ओकर का तरीका बाटे, हमारा का सावधानी बरते बाटे, एके बिना आज हमरे बीच में यहाँ भी है डॉक्टर राम लखन पाल, विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन, कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज प्रयागराज। भैया, आपके हमरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। सबसे पहले हम अपने किसान भाई के लिए जानकारी चाहब कि जौन कृषि रक्षा रसायन बाटे ई का अटे।
2: आधुनिक और वैज्ञानिक युग में फसलों उत्पादन हेतु फसलों को कीट रोग और खरपतवार से बचाने के लिए जो कृषि रक्षा रसायन जैसे कीटनाशक, फफूंदी नाशक तथा खरपतवार नाशक प्रयोग किए जाते हैं, वास्तव में ये रसायन एक प्रकार के जहर होते हैं। अतः इन रसायनों के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जिस प्रकार यह रसायन रोगों एवं अन्य जीवों के लिए घातक हैं, उसी प्रकार मानव शरीर में भी इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर में इसका प्रवेश नाक, मुंह तथा त्वचा के द्वारा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न संस्थानों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन, स्नायु एवं विभिन्न ग्रंथियों और अंततः संपूर्ण शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से कीट रोग और खरपतवार नाशी रसायन जो कृषि के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं, असावधानी एवं अज्ञानता पूर्वक प्रयोग करने पर प्राण घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। अतः रसायनों से बचाव के लिए इनको क्रय करने, भंडारण, रखरखाव, यंत्र, घोल बनाते समय छिड़काव और छिड़काव के बाद कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए।
1: हम जानकारी चाहब आपसे जो ना है कि जो भी किसी अच्छा रसायन

0: कहना है भैया, जेका हमका प्रयोग करे बाटे जब भी उका अपने यहाँ लेके आवत है तो का भंडारण के का तरीका बा, रख रखाव का तरीका बा, खास कर में कौन कौन से ऐसी सावधानी बा जन अपने किसान भाइयों का बरते?
1: कीटनाशकों के क्रय करने के लिए सावधानियों के क्रम में यह है कि कृषि रक्षा रसायनों को आवश्यकता अनुसार ही खरीदना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अगर उनका थैला फटा हुआ हो या सील लगे हुए ना हो, खुले हुए हों या रिसाव हो रहा हो, तो ऐसे रसायन के डिब्बे को नहीं खरीदना चाहिए। प्रमाणिक लेबल लगे हुए रसायन ही खरीदना चाहिए तथा उस पर रसायन का नाम, निर्माण की तिथि तथा अंतिम प्रयोग तिथि अवश्य लिखी होनी चाहिए। भंडारण में जब सावधानी रखनी होती है तो जहां तक हो सके इन्हें बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर ऊंचे स्थान पर सूर्य के प्रकाश से बचाव कर ताले में बंद करके रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों तथा टॉनिक की शीशियों के बीच में इन रसायनों को नहीं रखना चाहिए। मकान में, विशेषकर उस कमरे में जहां पर भोजन या सोने का स्थान हो, इन रसायनों को कदापि नहीं रखना चाहिए। इनकी विषैली गंध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। रसायनों के रखरखाव में और उनके यंत्रों के प्रयोग में भी सावधानी बरती जानी चाहिए। अधिक मात्रा में इन रसायनों के डस्ट या दानेदार रूप में होने पर सिर या कंधे या पीठ पर लाद कर लाने से बचना चाहिए। इन रसायनों को खाद्य पदार्थों के साथ रखकर कभी नहीं लाना चाहिए। रिसते हुए या खराब यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उचित प्रकार का नोजल प्रयोग करना चाहिए। बंद नोजल को मुंह से हवा मारकर कभी साफ नहीं करना चाहिए, बल्कि पुराने टूथब्रश में कपड़ा बांधकर उसका प्रयोग करना चाहिए। और घोल बनाते समय सावधानियां ये रखनी चाहिए कि हमेशा साफ पानी का ही प्रयोग करें ताकि नोजल में डस्ट पार्टिकल ना फंसे रहें।
0: बिल्कुल भैया सही कहे। हम कहीं देखा ये तो हो गया कि जन हमारा सावधानी बरते की बात है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब घोल जब बनावा जाता भाई अपन रसायन अपने फसल के लिए जो ना है जो ले जाता है डाले बिना, तो वह समय कहाँ प्रमुख बात है जो उन सावधानी बा ओके बारे में?
1: जब घोल छिड़कते हैं रसायनों को तो उस समय सावधानी ये बरतनी चाहिए कि छिड़काव जब करते हैं तो उस समय फुल आस्तीन के कपड़े पहनना चाहिए और रबड़ के दस्ताने, जूते, मास्क और आंखों के बचाव के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। केवल संस्तुत मात्रा और उसकी सांद्रता वाला घोल ही प्रयोग करना चाहिए। छिड़काव साइंग तथा बुरकाव सुबह के समय करना चाहिए। छिड़काव करते समय पत्तियों पर ओस या पानी की बूंदे नहीं होना चाहिए, जबकि बुरकाव के समय पत्तियों पर ओस पड़ी रहे तो अच्छा होता है। कभी भी हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव नहीं करना चाहिए। और छिड़काव के बाद में भी सावधानियां रखनी चाहिए। जिस खेत में रसायन का प्रयोग किया गया हो उसमें बोर्ड लगा देना चाहिए कि यह कीटनाशी या रोगनाशी का प्रयोग हुआ है। छिड़काव के बाद स्प्रेयर तथा बाल्टी को साबुन के पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए और छिड़काव में प्रयुक्त हुए कंटेनर, बाल्टी आदि सामानों को घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। बचे हुए घोल का प्रयोग अगर तुरंत नहीं करना है तो उसे तथा खाली हुए रसायन के डिब्बों को कुचलकर बेकार जगह पर गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। छिड़काव के बाद कपड़ों को साफ कर धूप में सुखाना और साबुन से स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात ही खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। अन्य विशेष सावधानियों में यह है कि स्वस्थ व्यक्ति को ही छिड़काव के लिए प्रयोग करना चाहिए। छिड़काव करने वाले व्यक्ति को एक दिन में 5 घंटे या एक सप्ताह में 15 घंटे यानी एक दिन के अंतर से ही उसको छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करते समय या घोल बनाते समय दवा का दुष्प्रयोग होने पर तुरंत चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए ताकि उसको कोई हानि न हो। अगर इस तरह से हम रसायनों का कृषि में प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर ही सावधानी के साथ करेंगे तो किसी को भी कोई हानि नहीं होगी और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें।
0: आप समय जाने चाहब कि देखें ये कोनो भी रसायन अगर फसल में डाला जाता बाटे तो यह भी देखा जाता है कि भाई शरीर के साथ साथ फसल के भी नुकसान न करे, तो उका कौन सा ऐसा उपयुक्त तो समय बाटे जेका फसल में जब डाला जा सके, सुबह का, शाम का भी, दोपहर, इस तरह से भी कुछ सावधानी बरता जाए?
1: बिल्कुल। ये हो कि जब हवा न चलती हो और शांत उसमें हो, सुबह अगर छिड़काव करेंगे तो पत्तियों पर ओस रहेगी तो ओस के समय बुरकाव करना चाहिए ताकि वो पत्ती पर चिपक जाए। और अगर हम ड्रॉप

0: में करेंगे तो वो पत्ती पर आके फिर ड्रॉप से ड्रॉप मिलकर के और लिक्विड बना के वो नीचे चला जाएगा, तो हमारी फसल को उतना लाभदायक नहीं होगा, या
1: बिल्कुल
0: जिनके
1: बिल्कुल
0: लिए सुरक्षा के लिए कीटों के लिए डालते हैं उन पर उसका असर कम होगा। तो सबसे समय उपयुक्त तो सुबह या शाम ही है, दिन में नहीं डालना चाहिए।
1: अच्छा, इसमें सिंचाई के देखा जाता है कि बहुत से लोग हैं सिंचाई के बाद में या पहले भी दवा का छिड़काव करते हैं, तो एक सही मतलब कौन सा ऐसा तरीका बटे?
0: एक तरीका और भी है कि जैसे हम जब फसल की सिंचाई करते हैं तो इसमें एक ड्रॉप विधि होती है, जिससे पानी जहां से हमारी नाली में आता है वहां पर हम एक कंटेनर में रख के और ड्रॉप ड्रॉप करके वो गिरता रहता है, तो उससे भी हमारी फसल में छिड़काव वो क्या नाम पानी के द्वारा आता है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन वो चीजें जो स्प्रे में प्रयोग करते हैं छिड़काव के रूप में, उसमें उसका असर नहीं हो पाता है, वो भूमि में प्रयोग के लिए माना जाता है, यानी मृदा का जब संशोधन करना हो उसके लिए वो ज्यादा बेटर होता है,
1: अच्छा, मतलब
0: या
1: वो जो
0: खरपतवारों की
1: रसायन का
0: रोकथाम के
1: जो
0: लिए।
1: प्रयोग
0: हाँ
1: बाटे वो जब भूमि संशोधित करे बाटे या अपन जमीन सुधारे बा, तो वो
0: जी
1: पानी के बहाव के साथ कह सकते हैं
0: कर
1: जमीन।
0: सकते हैं उसको,
1: अब बाकी भाई जो फसल जब उगी आई बाटे तो ओकर ओकर कोनो रोग बीमारी लग गई बाटे
0: तो
1: तो
0: उसके
1: ओकर
0: लिए
1: स्प्रे के माध्यम से।
0: छिड़काव करने
1: अच्छा,
0: चाहिए
1: एक
0: बेहतर।
1: लिए भी मशीन भी आवत हुए डॉक्टर साहब?
0: जी एक स्प्रे आता है, स्प्रे दो तरह के होते हैं, एक तो मतलब ह्यूमन बीइंग द्वारा मानव चालित होता है और दूसरा पावर होता है, जो हम जब ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ट्रैक्टर से या उस पर रख के उसका स्प्रे करते हैं, उसमें भी आदमी की जरूरत पड़ती है, और जो पीठ पर लाते हैं उसमें कम मात्रा में 5 से लेकर 10 लीटर या 15 लीटर तक जितनी क्षमता हो मनुष्य की, उस हिसाब से हम उस कंटेनर को यूज करके और प्रयोग कर सकते
1: तो
0: हैं।
1: मशीन के मतलब गुणवत्ता भी देखा ही पड़े कि किस तरह का मशीन बा, का सावधानी हमारा रखे पड़ता।
0: उसकी गुणवत्ता के लिए यह है कि हमें कितने एरिया में छिड़कना है उसी हिसाब से हम उसका प्रयोग करते हैं, अगर कम मात्रा में है तो ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है,
1: बिल्कुल
0: तब
1: बिल्कुल
0: हम एक आदमी द्वारा ही या दो आदमी द्वारा ही कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: जब बड़े फार्म पे करना होता है तो मतलब ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमके कृषि यंत्र की तब
0: जी
1: आवश्यकता पड़े जो
0: जी
1: ना है।
0: कृषि यंत्रों की
1: हम
0: तब जरूरत है।
1: कही डॉक्टर राम मखन पाल जी आप आए और जो कृषि रक्षा रसायन बाटे फसल में का कैसे प्रयोग करे बा, का सावधानी बरते बाटे, जानकारी बढ़िया बढ़िया दे, निश्चय रूप से हमारे किसान भाई के लिए लाभप्रद होए। हमका आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे डॉक्टर राम लखन पाल से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत। बातचीत का विषय था कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां। कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ओम प्रकाश कुमार की वार्ता, हृदय को स्वस्थ कैसे रखें।
1: हृदय रोग एक लाइफस्टाइल बीमारी है, जीवन शैली की बीमारी है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। उनके मुख्य कारण है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का पीना, ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का होना, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर होना, अनकंट्रोल ब्लड शुगर अर्थात डायबिटीज का होना, मोटापा, आलसी जीवन शैली सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, खाने में ज्यादा मीठा, नमक, फ्राइड ऑयली फूड्स का लेना, अत्यधिक शराब पीना, मानसिक तनाव और डिप्रेशन, और फैमिली हिस्ट्री जिनके माता पिता का प्रीमैच्योर डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुआ हो, ये सारे इनके मुख्य कारण हैं। अतः हमें हृदय को स्वस्थ रखने के लिए इन सब चीजों का बचाव करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपना भोजन स्वस्थ और सात्विक भोजन रखना पड़ेगा। खाने में प्रचुर मात्रा में हरी सीजनल सब्जियां, सीजनल फल, सलाद लेना चाहिए। खाने में लो फैट डाइट्स, पर्टली लो फैट दूध, दही, पनीर आदि की मात्रा लेनी चाहिए। खाने में मीठा और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को कम या नहीं लेना चाहिए। खाने में नमक की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। अगर सलाद में ऊपर से नमक डालते हैं या जो नमकीन चीजें हैं पापड़, भुजिया, अचार, इन सब का सेवन कम से कम लें। ज्यादा से ज्यादा फ्राइड और घी तेलों का से बनी हुई चीजों का उपयोग बहुत ही कम करें। शराब पीना पूर्णतया बंद करें या कम करें। इसके साथ साथ दूसरी होती है कि अपनी आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाएं। कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन तेजी से चलें या साइकिलिंग करें, दौड़ें, बाहर के

0: गेम्स जो होते हैं जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है या स्विमिंग है, इन सबको कम से कम आधा घंटा दिन में जरूर करें। कम से कम 15 मिनट योगा या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसे कमर का गर्दन की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कपालभाति, लोम विलोम प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम, इससे शरीर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेशन होता है, तो इसको जरूर किया करें। तीसरा होता है कि आप तंबाकू या उससे बने हुए प्रोडक्ट को बाय बाय करें। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इनको पूर्णतया बंद करें। सिगरेट पीने से हम कम उम्र वालों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फालिस, लंग कैंसर, ओरल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। अतः सिगरेट की और तंबाकू किसी भी रूप में कदापि ना लें। खाने में और दूसरा अल्कोहल, जो शराब है, शराब को पूर्णतया बंद करें। इससे ना सिर्फ हार्ट की बीमारियां होती हैं, साथ साथ लीवर फेल्योर, लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जो हमारे जीवन को कम ही उम्र में समाप्त कर देती हैं। चौथा, अपने वजन को कम रखें। जो नॉर्मल हमारा वजन कितना होना चाहिए, जो हमारी हाइट है इन सेंटीमीटर -100, यदि हमारी हाइट 5 फीट है मतलब 150 सेंटीमीटर है, तो हमारा आइडियल वजन 50 केजी का होना चाहिए। अपने वजन को कम करने के लिए आउटडोर एक्टिविटी, खेल को बढ़ाएं, साथ साथ एटलीस्ट 1/2 आवर मॉर्निंग वॉक, दौड़ रहे हैं, रनिंग करें, और खाने में मीठा, घी, तेल की चीजें, इसको कम करें। साथ साथ अपनी कैलोरीज को कम करें। आप अपने मानसिक तनाव को भी कम करें। मानसिक तनाव या डिप्रेशन कम करने के लिए हमें मेडिटेशन, जो ध्यान, योगा, प्राणायाम, इनका सहारा लेना चाहिए। हमें आध्यात्मिक चिंतन, मनन, मंदिर, सत्संग में जाना चाहिए, जिससे अपने जीवन के उद्देश्य को जानें और अपने मन के निगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदलने की कोशिश करें। तीसरा है, अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करें। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इसमें एक होता है HDL कोलेस्ट्रॉल, वो शरीर के लिए अच्छा होता है, इसको बढ़ाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें। दूसरा जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो होता है LDL कोलेस्ट्रॉल, इसके लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करें। साथ साथ जो अच्छे ऑयल हैं जैसे सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इसको भी लिमिटेड मात्रा में लिया करें। और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो उसको कम करें। यदि ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140/90 से कम होना चाहिए, इसके लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल, खाने में नमक कम, घी तेल की चीजें कम, हरी सब्जी, फल, सलाद ज्यादा, लो फैट डाइट्री प्रोडक्ट, दूध दही आप ले सकते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू इनका प्रयोग ना करें। और लास्ट में आप अपने ब्लड शुगर, यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आप अपना ब्लड शुगर, फास्टिंग शुगर 100 के पास रखें, खाने के बाद के शुगर को 140 mg/L पे रखें, और इसको करने के लिए आपको रेगुलर आधा घंटा एक्सरसाइज और आउटडोर एक्टिविटीज करें। और खाने में चावल, आलू, मीठा, मीठी चीजें, केला, जूस, जूस के फल का परहेज करें। और खाने में रोटी, दाल, हरी सब्जी, फल में सेब, अमरूद, पपीता, नाशपाती, बादाम, अखरोट, दूध दही, ये सब ले सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता तो आपको डॉक्टर की सलाह से दवाइयां रेगुलर लाइफ लॉन्ग लेना चाहिए, जिससे डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और हार्ट की बीमारियों से बचे। और लास्ट में है रेगुलर हेल्थ चेकअप। अपने ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, ECG, TMT प्रत्येक साल एक बार करवा लें, जिससे शरीर में होने वाले विकारों का जल्द से जल्द पता चल पाए और उसका उपचार हो पाए।
1: ये थे डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार। आपने सुनी इनकी वार्ता, हृदय को स्वस्थ कैसे रखें। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं और श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज दिन में 11 बजे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रेडियो प्रसारण सुनना न भूलिएगा, मन की बात। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। शाम 6:30 पर सुनिएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ओल्ड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे 7:30 पर पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन, और दोपहर 12:15 पर सुनना न भूलेगा सुश्री पद्मा तलवलकर का ख्याल गायन।

रोज की तरह सुबह 8:45 पर सुनना न भूलिएगा अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 9:00, 10:30 पर और दोपहर 12:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में ज्योति आनंद से गीत और भजन का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर। सुबह 10:05 पर लोक गीतों के कार्यक्रम लोकमात्री में कलाकार होंगे शोभा लाल और राजू सिंह। सुनिएगा इनके स्वरम में लोकगीत। साथ ही दोपहर 2:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में राजू सिंह और साथियों से लोकगीत सुनिएगा। 1:15 अपने फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का कार्यक्रम सुनिएगा हेलो अनुरोध। शाम 5:00 बाल गोपाल कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल के बच्चे सुनेंगे समर प्रताप सिंह की कहानी मूर्ख चोर। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवानी होगा शाम 5:15 पर।

ये थी हमारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आइए आनंद लेते हैं।

गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से काकभुशुंडी ने विस्तार से सतयुग, त्रेता और द्वापर में सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों की व्याख्या की। फिर अयोध्या के शूद्रकुल में कलयुग का अपना वो अनुभव सुनाया जब भीषण अकाल पड़ा था और जिससे त्रस्त होकर वो उज्जैन चले गए थे।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आपने आनंद लिया श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। दिनांक 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण, इस विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 तक फ़ोन नंबर 0532-2970462 और 0532-2423649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 0532-2970462 और 0532-2423649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन।

फिल्मों से भजन कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए केदारनाथ फिल्म से ये भजन अमित त्रिवेदी के स्वर में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है और अब समय उचला है प्रादेशिक समाचारों का। ये समाचार हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के नवनिर्मित मुख्य प्रशासनिक भवन समेत 2478 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और

0: आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहाँ बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत पहले पीसीबी सर्किट आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए,
3: तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
4: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
5: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान में दी गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी

को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मा कुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। कुशीनगर में कल दोपहर एक तेज रफ्तार कार और बाइक में हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। कसिया क्षेत्राधिकारी ने बताया कि यह हादसा अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के हाटा पिपराइच मार्ग पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश के जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, बांदा, संभल, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा समेत आसपास के जनपदों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन, राग है चारुकेशी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित उल्लास बापट का राग चारुकेशु में संतूर वादन। आपके साथ तबले पर संगत की थी शैलेंद्र ने। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि दिन में 11 बजे से आप सुन सकेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रेडियो प्रसारण मन की बात।

और शाम 6:30 पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ओल्ड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये दोनों ही कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

सुबह 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। 15:15 अपने फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का कार्यक्रम सुनिएगा हेलो अनुरोध।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं और अब समय हो चला है समाचारों का। तो बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की।

0: है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
1: Today we have a new national health policy.
2: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गई। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
6: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
7: हमारे यहाँ टोटल कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ सब मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
8: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये ये कार्यक्रम आज सुबह 9:00 बजकर

0: 10 मिनट पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल
1: जी। लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन

को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई।

0: हवाएं तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: joblessness, and even creation of bioweapons should AI remain unregulated, concluding that we can only ignore these warnings at our peril. And finally, arm in arm, Indians in US savor taste of home. Retailers push diaspora demand with WhatsApp alerts and neighborhood vans as mango exports from India seen rising 30% this season, notes the Economic Times. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today to also address Seychelles National Assembly and interact with members of Indian diaspora. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. US military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Srikanth enters final of men's singles event at US Open Badminton in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ारत खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो तमाम जरूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमरीकी फौज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेनेजुएला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1430 हो गई है। बचाव टीमें अब भी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा शराकतदारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और बाहमी मुफादात के इलाकाई व बैन अल-अक़वामी मामलात पर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी रोश कैमन में कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजारत ने बताया कि भारतीय दिफाई अफवाज का एक दस्ता भारतीय बहरिया के दो जहाजों के साथ इन तकरीबात में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के तीन रोजा सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करेंगे। यह दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती को तकवीत देगा और तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दोतरफा ताल्लुकात के मुश्तरक अज़्म को फरोग देगा। नई दिल्ली से आकाशवाणी के लिए अक्षित विद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
2: इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोटेनिकल गार्डन्स का दौरा किया और शजरकारी की एक तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने बोटेनिकल गार्डन में जायंट टोर्टाइज इनक्लोजर का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म सेशल्स के अपने तीन रोजा दौरे पर कल विक्टोरिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक

0: सुनामी तेल बर्दार जहाज पर यकतरफा ड्रोन से हमला किया। ये जहाज आबनए हुरमुज से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से ज्यादा खाम तेल मौजूद था। अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान के पास जंगबंदी मुआहदे की पासदारी का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी फोर्सेज ने कीको ऑयल टैंकर पर हमला किया। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इत्तला दी है कि आबनए हुरमुज के शुमाल में वाकई एक इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। इमदादी टीमें अब भी मलबे तले दबे लोगों की तलाश में मसरूफ हैं। यहां बुध के रोज 7.2 और 7.5 की शिद्दत के दो ताकतवर जलजलों ने जनूबी अमरीका के इस मुल्क में वसी पैमाने पर तबाही मचाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वेनेजुएला की हुकूमत ने कहा है कि जलजलों के 3 दिन बाद भी 68,900 लोग लापता हैं। इनकी गुमशुदगी की इतला उनके अहले खाना ने दी है। कौमी असेंबली के सदर जॉर्ज रोड्रिग्स ने कहा कि हजारों इमदादी कारकुन रात दिन मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वेनेजुएला के जलजले से मुतालिक मुतालियात की फाउंडेशन फुन विसिस ने इतला दी है कि वेनेजुएला के वस्ती इलाकों में 4.1 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। सरकारी इदारे ने बताया कि इस जलजले का मरकज मुल्क के अहम वस्ती साहली शहर लागुएरा से तकरीबन 35 किलोमीटर मगरिब में था। बुध के रोज आने वाले दो ताकतवर जलजलों से हुए बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद इस इलाके को आफतजदा जोन करार दिया गया है। इदारे के मुताबिक जलजला सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसकी वजह से जमीन ज्यादा शिद्दत से लरज गई और ढांचा जाती नुकसान भी ज्यादा हुआ। जलजले के माहरीन मुतासरा इलाके पर करीबी नजर रखे हुए हैं, जबकि फुन विसिस भी दिन रात निगरानी का काम जारी रखे हुए है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने खबरदार किया है कि जो कोचिंग सेंटर लाजमी हिफाजती उसूलों पर अमल नहीं करेंगे, उन्हें दिल्ली में कोचिंग सेंटर चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत जाब्ता जाती कानून मुतारिफ कराएगी, ताकि कोचिंग सेंटरों की सख्त निगरानी, ज्यादा जवाबदेही और तलबा की बेहतर हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वजीर आला ने तलबा से अपील की कि अगर उनकी कोचिंग सेंटर में हिफाजती इंतजाम में कोई कोताही या लापरवाही हो तो वो इसकी इत्तला ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए हुकूमत को दें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत मकानात की फेरिस्त साजी और गिनती का काम 100% मुकम्मल कर लिया है। ऐसा करने वाला ये मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पहले अजला में से एक बन गया है। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मुजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
2: हमारे यहाँ दो कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ सब मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में एक सख्त मुकाबले में जापान के खिलाड़ी युदाई ओकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
5: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम ने मोदी के सेशल्स पहुंचने की खबर को अव्वलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, सेशल्स बहर हिंद खित्ते में भारत की बहरी सलामती और खुशहाली की हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा है। वजीर आजम मोदी सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कभी बच्चों की खिलखिलाहट में मुस्कुराती है, कभी माँ की दुआओं में बस जाती है, तो कभी पिता के संघर्ष में अपना अर्थ खोज लेती है।

लेकिन श्रोताओं, जिंदगी का एक सच ये भी है कि इसका अगला पल किसी ने नहीं देखा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हम कल अपने अपनों के साथ ना हों तो क्या हमारे सपने, हमारे बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाइयाँ और परिवार की मुस्कान सुरक्षित रहेगी?

श्रोताओं नमस्कार, वणक्कम, आदाब, सत श्री अकाल, शुभम मंगलम। आज संगम नगरी प्रयागराज से मैं आपकी आज की कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

श्रोताओं, आज है 28 जून राष्ट्रीय जीवन बीमा जागरूकता दिवस। इस पर हम बात करेंगे उस फैसले की जो केवल एक कागज

की पॉलिसी नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी और विश्वास का सबसे मजबूत वादा है। दोस्तों, हम अपने घर पर ताला लगाते हैं, मोबाइल का बीमा कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि हमें उनके खोने का डर होता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हमारे परिवार की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? जी हाँ श्रोताओं, वो आप हैं। यदि परिवार का सहारा ही अचानक साथ छोड़ दे तो सबसे बड़ा संकट भावनाओं के साथ साथ आर्थिक भी होता है। ऐसे समय में जीवन बीमा परिवार के लिए उम्मीद की वो किरण बन जाता है जो अंधेरे समय में भी भविष्य को रोशन रखती है।

राष्ट्रीय जीवन बीमा जागरूकता दिवस का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि बीमा खर्च नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा में किया गया सबसे समझदारी भरा निवेश है।

श्रोताओं कहते हैं कि कमाने वाला केवल एक होता है, लेकिन उसी पर पूरे परिवार के सपने टिके होते हैं। जीवन बीमा का अर्थ केवल किसी अनहोनी के बाद मिलने वाली राशि नहीं है। आज ये बच्चों की उच्च शिक्षा, बेटी की शादी, घर के ऋण, सेवानिवृत्ति और भविष्य की आर्थिक योजनाओं का भी मजबूत आधार बन चुका है। आज भारत में करोड़ों लोग जीवन बीमा की सुरक्षा से जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो इसकी आवश्यकता को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए यह दिवस हमें याद दिलाता है कि सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए भी जीना सीखिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उठ जाए लेकिन उसकी पढ़ाई ना रुके,

अगर किसी माँ को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता न सताए, अगर परिवार आर्थिक संकट में भी सम्मान के साथ जी सके, तो इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है। यही विश्वास देता है जीवन बीमा। बीमा का अर्थ डर फैलाना नहीं है श्रोताओं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना है।

श्रोताओं, अब वो कार्यक्रम का सेक्शन जिसमें हम बात करते हैं आपके भेजे हुए प्यारे प्यारे संदेशों की। तो आपको बता दें कि जो गाना अभी आप सुन रहे हैं फिल्म साज और आवाज से पूनम की रात, ये गाना है। गायक कलाकार है सुमन कल्याणपुर, संगीतकार नौशाद, और इस गाने की फरमाइश हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से भेजी है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, रजत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल ने। दमधा ग्राम सुखरी कला अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि कोशिका, माफ कीजिएगा ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल ने। और इन्होंने एक बहुत प्यारा सा संदेश भी भेजा है। पेड़ काटकर बनाई गई इमारतें आराम तो दे सकती हैं लेकिन शुद्ध हवा नहीं। तो श्रोताओं, इस गाने का आनंद लीजिए और उत्तम सिंह जी इस गाने को सुनिए जिसकी फरमाइश आपने हमें भेजी थी।

नीरा त्रिपाठी जी प्रयागराज से लिखती हैं, क्षमा करना भी एक अजीब औषधि है। देते हम किसी और को हैं, लेकिन घाव हमारे हृदय के भर जाते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं नीरा जी। आप भी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम, और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें ज़रूर लिख भेजिए। एक और संदेश है, केवल रक्त संबंध से ही नहीं कोई अपना नहीं होता, बल्कि प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। किशोर कुमार सनवाले लिखते हैं, सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आपको भी। आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। दुर्गेश नागनपुरे दुर्गेश लिखते हैं, जीवन बीमा सिर्फ बीमा कवरेज से कहीं अधिक है। ये आपको और आपके प्रियजनों को मानसिक शांति और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन बीमा सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं है, ये आपके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपके परिवार, आपके संपत्ति की सुरक्षा और मानसिक शांति सुनिश्चित करने के बारे में है। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आपने इतने प्यारे प्यारे संदेश हमें भेजे हैं और आप इतने चाव से हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं।

दोस्तों, हम अपने परिवार से कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जीवन का सच यही है कि हर समय हर साथ हम हमेशा नहीं रहेंगे। ऐसे में जीवन बीमा उस वादे को निभाता है जो हमारी अनुपस्थिति में भी हमारे परिवार का हाथ नहीं छोड़ता। तो आइए इस राष्ट्रीय जीवन बीमा जागरूकता दिवस पर केवल बीमा लेने का ही नहीं बल्कि अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लें, क्योंकि जिम्मेदार इंसान वही है जो अपने आज के साथ साथ अपनों की कल की भी चिंता करता है। इसी भावपूर्ण संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख?
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए पहला गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। और लीजिए एक आवश्यक सूचना सुनिए। दिनांक 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 तक फ़ोन नंबर 0532-2970462 और 0532-2423649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 0532-2970462 और 0532-2423649। आप अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आंधी फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। स्टूडियो की घड़ी में 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। लोगों को बेसब्री से मॉनसून का इंतजार है, लेकिन मॉनसून अपने अनुमानित आगमन से थोड़ा पीछे चल रहा है। क्या है मॉनसून के पिछड़ने के कारण और कब से प्रदेश में शुरू होगा बारिश का दौर, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह।
3: अतुल जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर भारत इस वक्त तेज गर्मी से जूझ रहा है, बहुत ही ज्यादा तापमान और लू देखने को मिल रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसे में सभी को इंतजार था, ये उम्मीद थी कि मॉनसून के आने का समय हो गया है और थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, कहीं कोई ज्यादा बारिश या इस तरह का तापमान में कोई कमी। तो ये जो मॉनसून है, अभी इसकी क्या स्थिति है और क्या लगता है आपको कि कितने दिनों में ये उत्तर प्रदेश में आ सकता है?
4: देखिए, वर्तमान स्थिति जो है इस समय उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ है उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती प्रसंचरण के रूप में, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसमी तंत्र नहीं है। यद्यपि छिटपुट बारिश कुछ एक जगहों पर हो रही है, परंतु कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही है, जिसके कारण की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई है। और जहां तक मानसून की है, जो वर्षा है वो 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर जो है वो मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसी समय जो है मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। तो अभी मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जून के आखिरी दिनों में जो है वो प्रदेश में मानसून आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, वो 28 जून के बाद किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।
3: सर, मानसून में देरी की वजह क्या मानते हैं आप लोग? जो आप लोगों ने अभी तक रीड करा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्थितियां नहीं बन पा रही थी, इसका कारण क्या है?
4: देखिए, मानसून की जो परिस्थिति है वो कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रीय कारक होते हैं और कुछ सेमी परमानेंट फीचर होते हैं। तो जो सेमी परमानेंट फीचर थे वो सारे के सारे जो हैं इस समय अनुकूल नहीं थे, चाहे वो जो भी हो, मैस्करेन हाई दक्षिणी हिंद महासागर में होता है, वो फेवरेबल पोजीशन में नहीं था। इसके अतिरिक्त हीट लोक जो पाकिस्तान के जैकोबाबाद के आसपास बनता है, उसका भी पोटेंशियल कम था, मतलब वो कमजोर था, जिसके कारण की जो मौसमी द्रोणी है वो भी बहुत ही कमजोर थी। इसके अतिरिक्त वेस्ट कोस्ट पर एक ऑफशोर ट्रफ बनती है और वहां पे भी जो है दाब प्रवणता न होने के कारण वो भी अभी तक प्रदर्शित नहीं हो रही थी। तिब्बतन एंटी साइक्लोन या तिब्बतियन चक्रवात वो भी अपनी सामान्य स्थिति से खिसका हुआ था। तो ये सारी ही परिस्थितियां थी जिसके कारण की जो मानसून का फ्लो था वो 10 दिनों के आसपास तक स्टेग्नेंट रहा। लेकिन अभी फिर से एक सिस्टम बना बंगाल की खाड़ी में और उसकी वजह से ये

0: पिछले 48 घंटों के दौरान दोनों ही शाखाएं आगे बढ़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की, और आने वाले दिनों में एक और सिस्टम बनने की संभावना है जिसके कारण कि इसके फिर से आगे बढ़ने और उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना बन रही है।
1: अतुल जी, एक ये इस तरह की भी खबर है कि इस बार कम वर्षा होगी हर बार की तुलना में, और इस तरह के संकेत लगातार प्राप्त हो रहे हैं, और इसको लेकर सरकार तैयारी भी कर रही है कि कहीं सूखा पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो क्या इस तरह की कोई बात है कि क्या इस बार नॉर्मल से कम बारिश होगी?
0: जी बिल्कुल, देखिए जो दीर्घावधि पूर्वानुमान है मानसून के लिए दो चरण में जारी किए जाते हैं। प्रथम चरण में जो दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि इस साल कुल समेकित वर्षा अखिल भारतीय समेकित वर्षा सामान्य की तुलना में 92% होने की संभावना है, और उसको फिर मई के आखिर में 29 मई को फिर से अपडेट किया गया और ये आंकड़ा जो है 92 से 90% पर आ गया। लेकिन ये अखिल भारतीय वर्षा है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो ज्यादातर मॉडल्स जो हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर या ज्यादातर स्थानों पर मानसूनी वर्षा जो जून से सितंबर के दौरान होती है वो सामान्य की तुलना में कम रहेगी, और इसके लिए पहले ही संबंधित विभागों और स्टेक होल्डर्स को सूचित किया जा चुका है जिससे कि वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इस हिसाब से निर्धारित कर सकें और उसके अनुसार योजनाओं पर अमल किया जा सके। तो कुल मिला के इस साल जो है वो बारिश सामान्य की तुलना में कम होने की संभावना है, हर साल की तुलना में कम ऐसा हम नहीं कह सकते, पहले भी सामान्य से कम बारिश हुई है कई बार
1: जी
0: तो, लेकिन ये है कि जो दीर्घावधि औसत है उसकी तुलना में कम होने की संभावना।
1: सर, अलिनो का भी क्या इसमें कोई योगदान है?
0: एलिनो का भी योगदान है, एलिनो एक्चुअली एक रिमोट फोर्सिंग है और एक मेजर ड्राइवर है इंडियन समर मानसून का, और एलिनो का जब भी वार्म फेज होता है, वार्म फेज का मतलब जब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में एलिनो 3.4 रीजन में जो है वो समुद्री सतह का तापमान जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम वार्म फेज ऑफ इनसो या एलिनो बोलते हैं, और इसका सीधा तौर पर प्रभाव प्रशांत महासागर का नहीं होता है लेकिन ये दो तरीके से प्रभावित करता है। पहला, इसका जो एलिनो सदर्न ऑसिलेशन का जो एटमॉस्फेरिक ब्रांच होती है सदर्न ऑसिलेशन, उसके थ्रू भारत के ऊपर एक एनोमलस एंटीसाइक्लोन बनता है और जिसके कारण की जो कन्वेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं वो उसको सप्रेस करता है और यहाँ पे गर्म हवाओं का अधोगमन कराता है, मौसम जो है वो बिगड़ने से रोकता है। और दूसरी चीज जो होती है वो ये जो है मानसून फ्लो को कमजोर करता है, तो उस मानसूनी हवाओं के कमजोर पड़ने से भी जो वर्षा की तीव्रता और उसका कुल परिमाण है पर प्रतिकूल तौर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एल्निनो सिर्फ अकेला एक ड्राइवर नहीं है, कई और फैक्टर होते हैं एल्निनो के साथ जो कि इसको प्रभावित करते हैं, ये भी एक कारण है के कारण कि सामान्य से कम वर्षा होने की प्रायिकता जो है वो सर्वाधिक प्रायिकता व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ एक क्षेत्रीय कारक भी होते हैं जो कि समय समय पर इन चीजों को निर्धारित करते हैं और उसके आधार पर आगे का हम निर्णय लेते हैं।
1: सर, अगर हीट वेव पैटर्न की बात करें तो हमने देखा कि लगातार यूपी के कई ऐसे जिले हैं जो देश के सबसे गर्म जिलों में शामिल रहे, तो क्या ये गर्मी और हीट वेव पिछले सालों के मुकाबले बढ़ी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, या एक सामान्य तौर पर चल रहा है अभी?
0: तराई इलाकों को छोड़ दें तो बाकी सारी जगहों पर फ्रीक्वेंसी और अवधि उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ी है, लेकिन जो प्रदेश के दक्षिणी जिले सर्वाधिक गर्म रहे इसके पीछे एक भौगोलिक और वैज्ञानिक कारण भी है, वो ये है कि इस समय मतलब समर सॉल्स्टिस होती है 21-22 जून में, उस समय सूर्य जो है वो सीधा कर्क रेखा के ऊपर होता है और कर्क रेखा जो है वो प्रदेश के दक्षिणी भाग के पास से होकर गुजरती है, तो मतलब सूरज जो है वो प्रदेश के दक्षिणी भाग के सीधा ऊपर होता है, इस वजह से सर्वाधिक गर्मी इस समय वहां पर वो देता है। और इसके अतिरिक्त वहां का जो भूभौतिकी स्थिति है उसके कारण भी वहां पर हीट जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और उसका हीटिंग पोटेंशियल बढ़ता है, तो ये कई सारे कारक हैं जो कि उसको वैज्ञानिक तौर पर परिभाषित करते हैं कि प्रदेश के दक्षिणी भागों में तापमान जो है वो बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा होता
1: तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले बड़ी है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप लोग?
0: है। देखिए जिस भी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ना या घटना ये तो एक सतत प्रक्रिया है, मतलब जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, और ये अभी बढ़ी या घटी है ऐसा नहीं है, जैसे हमने बताया तराई इलाकों में घटी है, तो कुल मिला के जो जलवायु

0: परिवर्तनीय एक्सेलरेट हो गया है और इस कारण जो उसके प्रभाव पहले काफी दिनों के बाद या एक जनरेशन के बाद दिखाई देते थे, अब वो जल्दी सेम जनरेशन में उसी पीढ़ी में दिखाई देने लगे हैं और वो लोगों को महसूस भी हो रहा है।
1: जिस तरह आप कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन है उसके कारण ये सारी चीजें एक्सिलरेट हो गई हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि जो सीजन है हम उसमें एक्सट्रीम वर्षा देखते हैं या एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, या फिर सर्दियों का मौसम बीत जाता है सर्दी नहीं पड़ती, या एक न्यू नॉर्मल के तौर पर आगे बना रहे?
0: बिल्कुल, देखिए इस समय की जो वर्तमान स्थिति है 21वीं सदी में अगर हम देखें तो ज्यादातर समय ये स्थितियां रही हैं कि जब भी तापमान जो है, चाहे वो वर्षा हो चाहे तापमान हो, जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं वो बढ़ गई हैं और जो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज होती थी वो घट गई हैं, तो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है वो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स जो है उसमें अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी देखी गई है और ये एक न्यू नॉर्मल है।
1: अतुल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामूहिक चर्चा में आज आपने सुना उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: आकाशवाणी के मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम। मेजबानी की है सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान ने, पेशकश आसिफ इकबाल की है।
1: लफ्ज जब कागज पर उतरते हैं तो महज स्याही नहीं रहते, एहसास बन जाते हैं। कभी किसी मुस्कुराहट का पैगाम, कभी किसी याद की खुशबू, और कभी किसी कीमती आरा की तर्जुमान।
2: और जब यही एहसास खत की शक्ल में हम तक पहुंचते हैं तो यूं लगता है जैसे दूर बैठे हमारे सामाईन हमारे रूबरू आ बैठे हों।
1: आपके खतूत, आपकी मोहब्बत, आपकी राय और उर्दू जबान से आपकी वाबस्तगी को सलाम पेश करते हुए हम हाजिर हैं लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम
2: खत के लिए शुक्रिया। एक ऐसा प्रोग्राम जहां गुफ्तगू का आगाज आपकी खतूत से होता है और इख्तिताम आपकी मोहब्बतों पर।
1: मैं हूं शाजिया खान
2: और मैं हूं सुरेंद्र राजेश्वरी।
1: आइए खोलते हैं आज के खतूत का दरीचा और मिलते हैं अपने सामईन से। हमारा पहला खत आया है खदरा लखनऊ से और लिखने वाली हैं सना खातून। लिखती हैं, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा और आज के उर्दू प्रोग्राम से हमको बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि वाकई आज के दौर में वालिदैन अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हैं, जिससे उनकी परवरिश अच्छी नहीं हो रही है। जबकि आज के दौर में वालिदैन को बच्चों को पूरा वक्त देना चाहिए और उनकी हर बात को समझना चाहिए और उनके एहसासात को भी समझना चाहिए। आज के प्रोग्राम से बहुत ही अच्छे से इस बारे में गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम।
2: सना खातून साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया कि जो मुबाहिसा आपने सुना है हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियां। शाजी, वाकई इस वक्त ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे जितने सामीन हैं उनके घर में जो बच्चे खासतौर से तालिबे इल्म हैं उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है कि वालिदैन जो बात हम तक पहुंचाते हैं, वालिदैन की जो कही बातें हैं वो हमारे मुस्तकबिल को बनाने में बहुत मददगार साबित होती है। इसलिए वालिदैन की भी जिम्मेदारियां हैं और जो उनके घर में बच्चे हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि मुस्तकबिल को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। और हमारी कोशिश भी ये थी कि आप तक वो बातें पहुंचे कि वालिदैन किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। सना खातून साहिबा, आपने प्रोग्राम सुना और हम अच्छा लगा कि और भी कुछ तफसील से लिखें ताकि हम और बेहतर तरीके से अपने सुनने वालों तक पहुंचा सकें। बहरहाल आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।
1: इसी खत की मुनासिबत से हमारे पास अगला खत है उर्फी वसीम साहब का, जो लखनऊ से हैं और लिखते हैं कि सैयद मोहम्मद उमर साहब, आपका आज का उर्दू प्रोग्राम वालिदैन को लेकर सुना, बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा। इसी मुनासिबत से हमारे पास एक और खत है नजमी हसन साहब का। नजमी हसन साहब जो कि रुदौली शरीफ से लिखते हैं, शुक्रिया आकाशवाणी उर्दू प्रोग्राम, आपके इस प्रोग्राम का आने वाली नस्लों पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर परवीन शुजात साहिबा, मौलाना साहब और जो इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे थे और इतने अच्छे अंदाज में पेश किया, वो काबिले तारीफ हैं। इसी खत की मुनासिबत से हमारे पास एक और खत है मंतशा खातून का और ये लखनऊ से ही हैं। ये लिखती हैं, उर्दू प्रोग्राम दिल को छू जाने वाला एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। कल का प्रोग्राम अहद हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने और सुनने को मिला, बहुत शुक्रिया।
2: उर्फी वसीम साहब, नजमी हसन साहब और मंतशा खातून साहिबा, बहुत शुक्रिया आप सबका कि ये मुबाहिसा आपको इस कदर पसंद आया है। अहद हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियाँ, ये जो दौर इस वक्त चल रहा है, टेक्निकल एरा में हम लोग चल रहे हैं शाजिया खान
1: जी,
2: सोशल मीडिया का जमाना है और इस दौर में कैसे वालिदैन अपने बच्चों की तालीम तरबियत करेंगे, तो ये बहुत बड़ा मसला है।

0: बस ये वही बात है।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया।
0: हमारे इतने प्यारे सामीन हैं, इतने प्यारे प्यारे खतूत हमें भेजते हैं। यकीनन ये जो एक रابطہ हमारे दरमियान है खतों के सिलसिले से, ये इस बात की तर्जुमानी भी करता है कि किस तरह से हमारे तमाम सामीन आपकी इस सलाहियत से भी वाकिफ हैं, बखूबी वाकिफ हैं।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज की कलाकार थी ज्योति आनंद। आपने सुने इनके स्वर में भजन और गीत। सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजने को हैं, बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिसे हम रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के एक महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को

को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर कीकू पर हमला किया। ये टैंकर होर्मोज जल डमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने तेल पोत पर हमला करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने होर्मोज के ठीक उत्तर में विस्फोटों की सूचना दी है। किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की युदाई ओकिमोतू को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीन ताइपी के सूली यांग से होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसन से हार गई। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष टी20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान। दिस इज

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माथुरी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शोभा लाल और साथियों के स्वर में लोकगीत, साथ ही आप सुनेंगे राजू सिंह और साथियों के स्वर में लोकगीत। तो पहले सुनिए शोभा लाल और साथियों के स्वर में देवी गीत।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में आप सुन रहे हैं शोभा लाल और साथियों के स्वर में लोक गीत। अभी आपने सुना था इनके स्वर में गंगा गीत, अब सुनिए शोभा लाल और साथियों के स्वर में कहरवा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: लोक गीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में लीजिए अब सुनिए राजू सिंह और साथियों के स्वर में ये लहरा।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आपने सुने शोभा लाल और साथियों और राजू सिंह और साथियों के सुर में लोकगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत।

श्रोता, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और ये पहला गाना हमने लिया है फिल्म कयामत से कयामत तक का। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं, मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना, आनंद मिलन का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लेकिन इससे पहले कि हम आपको अगला गाना सुनवाएं, सुन लीजिए एक आवश्यक सूचना। दिनांक 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आप

के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532-2970462 और 0532-2423649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 0532-2970462 और 0532-2423649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, जीवन में हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। जब मन में कोई सुंदर सपना जन्म लेता है तो उसे पूरा करने के लिए नए अवसर, नए रिश्ते और नई संभावनाओं के सिलसिले भी शुरू हो जाते हैं। सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं। तो आइए हम भी जुड़ जाते हैं इस ख्वाब से और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोता आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत हंसी ठिठोली। रिश्तों में जीवन में मिठास घुलने का काम करती है, ये तनाव को कम कर देती है और अपनों के बीच अपनापन और विश्वास बढ़ाती है ना। साथ में हंसने वाले लोग कठिन परिस्थितियों का भी अधिक सहजता से सामना कर पाते हैं। हल्का फुल्का मजाक रिश्तों को जीवंत और खुशहाल जो बनाता है, लेकिन ये हमेशा मर्यादा और सम्मान की सीमा में होना चाहिए, क्योंकि मजाक जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए रिश्तों में दूरी भी ला सकता है। इसलिए स्नेह संवेदनशीलता और सम्मान के साथ की गई हंसी ठिठोली हर रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना। कार्यक्रम है फिल्म

लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना था आशा भोसले की आवाज़ में, आनंद बख्शी की शब्द रचना थी, आर डी बर्मन का संगीत था। और अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं वो है फिल्म जो जीता वही सिकंदर से।

जी हाँ श्रोताओं, पहली मोहब्बत का एहसास मन को नई उमंग, उत्साह और कल्पनाओं से भर देता है। उस समय हर पल खास लगता है और दुनिया पहले से अधिक सुंदर दिखाई देने लगती है।

और अब कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं, पेश खिदमत है ये नगमा जो हर भारतीय के हृदय में अपने देश के प्रति गर्व, सम्मान और समर्पण की भावना जागृत करता है, क्योंकि श्रोताओं, सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने में दिखाई देता है। और अब हम अपनी जिम्मेदारी

और श्रोताओं, इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रेडियो प्रसारण मन की बात। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले

0: अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं।

कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय

बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है, और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने यह सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया, और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़की

या इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के

हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना।

टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। यह हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है

हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है? ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओल्ड लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन इंग्लैंड में खेली जाने वाली आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:30 से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद 12:15 पर आपको सुनवाएंगे पद्मा तलवलकर का गायन। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 12:30 से। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो अनुरोध लेकर आएंगे जिनमें 1:15 पर। पर 2:30 पर लोकगीत का कार्यक्रम कलाकार राजू सिंह और साथी। 12:00 कार्यक्रम में शाम 5:00 आपको सुनवाएंगे समर प्रताप सिंह की लिखी कहानी मूर्ख चोर।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब एक सूचना सुनिए। 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर पुनः सुनिए 0532-297-0462 और 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग गौड़ सारंग में गाया ख्याल, कलाकार पद्मा तलवलकर।

राग गौर सारंग में गाया ख्याल अभी आप सुन रहे थे। गायिका थी पद्मा तलवलकर। इनके साथ हारमोनियम पर संगीतकार थे गोविंद पटवर्धन और तबला संगीतकार ओंकार गुलवाड़ी। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे हैं आनंद बख्शी के गीत रचना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम अब्दुल्ला।

कुमार सानू और देवकी पंडित की आवाजों में आप सुन रहे हैं मजरूह की गीत रचना जतिन ललित का संगीत, फिल्म का नाम कभी हाँ कभी ना।

शायर कौन है, शायर की शख्सियत क्या है। शायर साहब ने बड़े खूबसूरत शब्दों में शायर की वानगी को बयां किया है।

मुकेश की आवाज़, साहिर की गीत रचना, खय्याम की मौसीकी, फिल्म कभी कभी।

0: वो शायर है जो जख्मों को गजल कर देता है, पत्थर से भी मोहब्बत का महल खड़ा कर देता है। हर मिसरा उसकी रूह का आईना बन जाता है। शायर जहां बैठ जाए महफिल बन जाती है।
1: मैं पल दो पल का शायर हूं।
0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप।

मोहित चौहान की आवाज में आप सुन रहे हैं इरशाद कामिल की गीत रचना, प्रीतम का संगीत, फिल्म का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

आजकल के दौर में फिल्मों में रुबाइयाँ बहुत कम देखने सुनने को मिलती हैं। फारसी भाषा के उमर खय्याम को रुबाइयों का सबसे प्रसिद्ध शायर माना जाता है। रुबाई केवल चार पंक्तियों की कविता नहीं, बल्कि कम शब्दों में गहन भाव व्यक्त करने की कला है। साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, शकील बदायूनी, जावेद अख्तर और गुलजार जैसे गीतकारों ने अपनी रचनाओं में रुबाई और शायरी की परंपरा से गहरी प्रेरणा ली। भले ही उनके अधिकांश फिल्मी गीत शुद्ध छंदबद्ध रुबाई न हो, लेकिन उनकी भाषा, बिंब और दार्शनिक गहराई पर इस शैली की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं सौदागर फिल्म से ली गई एक रुबाई, जिसे लिखा रविंद्र जैन ने, धुन भी रविंद्र जैन ने तैयार की है, गाया है इसे मोहम्मद रफ़ी और आरती मुखर्जी ने।

बारिश की बूंदें जब खिड़की पर दस्तक देती हैं, तेरी यादें भी दिल में हलचल सी करती हैं। कुछ बूंदें जमीन पर गिरकर मिट जाती हैं, कुछ आंखों में उतरकर अश्क बन जाती हैं। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं उज्ज्वल सिन्हा के साथ।

महफिल संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8004926250 यानी 8004926250।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है।

0: आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agreh were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous, from the design to the manufacturing of these

0: इंडस्ट्री और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी योगा डे पर तबादले ख्याल किया, जिसे दुनिया भर में मनाया जा रहा था। इस साल ये तकरीब 2500 से ज्यादा मकामात पर हुई। हिंदुस्तान में योगा डे में लाखों लोगों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी तामीर में आवाम की शिरकत हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी अपील के जवाब में मग़रिबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ मकामात पर शहरियों ने यकजहती का मुज़ाहरा किया और सोने की खरीदारी और गैर मुल्की सफ़र को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया। जनाब योगी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो ज़रई जमीन को केमिकल्स से दूर रखें और कुदरती खादों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा जमीन पर काश्त करें। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में लाखों खानदानों को हादसाती बीमा फराहम कर रही है।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को 3,700 रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को सहायता मिल चुकी है।
1: वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बराह करम मुझे अपने इर्द गिर्द होने वाली कोशिशों के बारे में लिखते रहें। वज़ीर आज़म ने लोगों से बारिश के पानी की हर बूंद को बचाने और कैच द रेन मुहिम को फ़रोग देने की अपील भी की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज हाथरस और आगरा के दौरे पर हैं। वज़ीर आला सबसे पहले हाथरस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। जनाब योगी वहां एक जल सयाम से खिताब भी कर रहे हैं। हाथरस का दौरा करने के बाद वज़ीर आला आगरा पहुंचेंगे, जहां वो कमिश्नर ऑडिटोरियम में आगरा डिवीज़न के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कामों से मुतालिक मीटिंग करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला ज़िलाई तरक्याती कामों और अमन अमान का भी तफसीली जायजा लेंगे। आगरा से वापसी पर वज़ीर आला शाम को लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की जायजा मीटिंग करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल 2478 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी की नई तामीरशुदा मरकजी इंतजामी इमारत भी शामिल है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का भी संगे बुनियाद रखा। मरकजी वजीर बराए रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव और मरकजी वजीर बराए माहौलियात जंगलात और मौसमियाती तब्दीली भूपेंद्र यादव भी वज़ीर आला के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के नए वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में श्री सत साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़िद रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्रजेश पाठक ने मशाल रोशन करके और कौमी इत्तेहाद का पैगाम देते हुए तकरीब का आगाज किया। उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि सत्य साई बाबा की तालीमात इंसानी खिदमत, इत्तेहाद और मोहब्बत पर मबनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों की तस्दीक कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कल इस मामले पर एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। उन्होंने यह भी यकीन दिलाया कि अतिया की गई चांदी की ईंटों और जेवरात के मुकम्मल अकाउंट्स दस्तयाब हैं। कौमी पल्स पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। रियासत के तमाम अजला के बूथों पर 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक डोर टू डोर मुहिम चलाई जाएगी। और आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में मौसम खुशगवार बना दिया। संभल में भी आज सुबह तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने अगले चंद घंटों के दौरान रियासत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब पेश है आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का

साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो अनुरोध। कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: मैं प्रदीप कुमार नैनी प्रयागराज से बोल रहा हूँ।
0: जी प्रदीप जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: नसीब फिल्म का मेरे नसीब में तू है कि नहीं तेरे।
0: हेमा मालिनी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना है।
1: ये गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है।
0: अच्छा, तो जी किस पसंद को पूरा करते हैं? तो प्रदीप जी, आपकी पसंद का नसीब फिल्म का ये गाना सुनवाएं।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: मैं प्रदीप कुमार नैनी प्रयागराज से बोल रहा हूँ।
0: जी प्रदीप जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: नसीब फिल्म का मेरे नसीब में तू है कि नहीं तेरे।
0: हेमा मालिनी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना है।
1: ये गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है।
0: अच्छा, तो जी किस पसंद को पूरा करते हैं? तो प्रदीप जी, आपकी पसंद का नसीब फिल्म का ये गाना सुनवाएं।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: हाँ मैडम, मैं रमेश गुप्ता बोल रहा हूँ मैडम। अब रहने वाले हैं जिला प्रयागराज, गांव का नाम है चकचाम प्रिंचाय और रहते हैं मुमरा कल्याण पाटा, इसमें मुंबई से बात कर रहे हैं।
0: जी जी रमेश जी, आपका तो अक्सर कॉल आता है हमारे इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैडम आज मैं गाना सुनवा दिए, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है और गाने बोले दिल दीवाना है।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग सुनना है।
1: हाँ मैडम गाना अच्छा है, आज मैं
0: जी
1: पहली बार
0: जी
1: फोन किया हूँ इस फिल्म
0: अच्छा,
1: का।
0: इस फिल्म के लिए पहली बार आपने कहा है, तो चलिए आपकी इस पहली पसंद को, जो आपने दिल तो पागल
1: हेलो,
0: है फिल्म का सुनना चाहे जी, तो आपको सुनवाने जा रहे हैं रमेश जी, दिल तो पागल है फिल्म का ये गाना। लीजिए सुनिए।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो अनुरोध कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैडम जी, हम राकेश सिंह भैया मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं।
0: जी राकेश सिंह जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: राजा बाबू का उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में है, कोई सा इसमें गाना सुना।
0: अच्छा, सारे गाने पसंद है आपको राजा बाबू फिल्म के।
1: जी मैडम।
0: तो आपको किसी का नाम तो नहीं लेना है?
1: नहीं, सभी श्रोताओं के,
0: सभी श्रोताओं के लिए राकेश जी ने ये गाना फरमाइश किया है। तो आइए सुनते हैं राजा बाबू फिल्म का ये गीत।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट राम जालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। जी जी, हम टोटली ब्लाइंड हैं।
0: जी जी गुलाब जी, हमारी आपकी बातचीत पहले भी हो चुकी है।
1: हाँ बहुत, हमारी आप दीदी हैं समझ लीजिए, कितना अच्छा लगता है अपनी दीदी से बात कर रहा हूँ।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं और आपकी पसंद के गानों को हम सुनवाते हैं। तो गुलाब जी, आज आपकी कौन सी पसंद है?
1: एक क्रांति फिल्म का गाना है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी।
0: जी जी, हाँ हाँ, नितिन मुकेश और लता जी की आवाज़ में ये गाना है, क्रांति फिल्म का, और गुलाब जी की पसंद है, तो आइए सुनते हैं।

0: हेलो, अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: जी दीदी, मैं ग्राम बिड़ोरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकेंद्र सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: अच्छा भाई, ये मध्य प्रदेश से हमारे एक नए श्रोता जुड़े हैं प्रयागराज के। हेलो अनुरोध कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बताइए, आपको
1: जी
0: कौन सा गीत सुनना है?
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, के क्योंकि मेरा पहली बार कॉल लगा तो मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: जी बहुत बहुत स्वागत, इसीलिए मैंने आपका किया, क्योंकि जब नए श्रोता जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि देखिए मध्य प्रदेश में भी लोग हमारे कार्यक्रमों को, आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रमों को सुनते हैं। तो क्या फरमाइश है आपकी?
1: दीदी, आज फिल्म का नाम है हिसाब खून का।
0: जी,
1: उसका एक गीत है, दूर नहीं जा सकती तुझसे, ऐसा कुछ गीत।
0: हाँ हाँ, पास भी मैं ना आऊंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें जो मिथुन चक्रवर्ती है, पूनम ढिल्लो है।
0: जी जी जी जी, तो बड़ा ही अच्छा गीत है, लेकिन देखिए इस गीत की फरमाइश कभी किसी ने की नहीं, आपको बहुत
1: मैं क्या
0: पसंद
1: है कि ऐसे ही 90 के दर्शक के और 85-90 के दर्शक के ये गीत सुनता हूँ। वो
0: जी,
1: बहुत
0: जी।
1: अच्छे गीत लगते हैं।
0: अच्छा,
1: उसमें आवाजें बढ़िया मिलती हैं, जैसे और सुरेश वाडेकर, मोहम्मद अजी, लता मंगेशकर, तो इन लोगों की आवाज बहुत अच्छी लगती है।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आगे से भी आपका कार्यक्रमों में फोन आएगा और आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल जुड़ेंगे। वो मेरा पहली बार कॉल लगा, अब तो मैं लगाता रहूंगा।
0: जी चलिए, धन्यवाद। और अपनी पसंद का सुनिए हिसाब खून का, फिल्म का ये गाना।

0: इस समय श्रोता सुन रहे हैं हेलो अनुरोध कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
1: मैं तनु निषाद बोल रही हूँ प्रयागराज से।
0: जी तनु जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है अनपढ़ और गाने के बोल हैं आपकी नजरों ने समझा।
0: तनु जी, मैं जहाँ तक मुझे आपकी आवाज से लग रहा है आपकी उम्र ज्यादा तो नहीं है। कितने साल की होंगी?
1: ज्यादा तो नहीं है लेकिन
0: मतलब आपकी एज के जो लोग हैं वो नए फिल्मी गाने ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपने अनपढ़ फिल्म का गाना पसंद किया। तो गाना तो खैर इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए हुआ कि युवाओं को तो नए गाने पसंद आते हैं।

0: लेकिन पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है तनु जी। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनपढ़ फिल्म का ये गाना।
0: धन्यवाद।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार
1: मेरा नितेश आर्या है
0: जी। नितीश जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: संत नाम है जुनून।
0: अच्छा जी, जुनून का कौन सा गाना है?
1: गाने बोले जो प्यार कर गए वो कोई और लोग थे।
0: तो आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं नितीश जी, लीजिए सुनिए।

यथा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो अनुरोध, जिसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया मधु कुमार ने।

सड़क पे चलते समय सदैव यातायात के नियमों का पालन करें। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य धारण करें। वीडियो वीव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेव्स प्लेटफॉर्म पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। दो बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में दोपहर समाचार होंगे।

0: And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS Dhunagiri, INS Sanshodhak और INS Agra को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandedh, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ. हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई. आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे.
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारत

0: समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
0: कोलकाता में INS दुल्हागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि यह भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने

0: से अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल

0: भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम। कलाकार राजू सिंह और साथी, इनके स्वरों में पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं एक देवी गीत।

लोकगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म और DD फ्री डिश पर। आगे बढ़ने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532 29

सात शून्य चार छः दो और 0532 2423 649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532 2970462 और 0532 2423 649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 800 4926 250 यानी 800 4926 250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। लोकगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजू सिंह और साथियों का गाया लचारी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: लोकगीत कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाने जा रहे हैं राजू सिंह और साथियों की गाई कजली।

लोकगीत कार्यक्रम के कलाकार थे राजू सिंह और साथी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 3 बज रहे हैं, हमारी ये सभा संपन्न होती है। अगली सभा 5 बजे आरंभ होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। इस दौरान FM 100.3 MHz पर विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क के प्रसारण 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सुने जा सकते हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 5 बजे हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में बस थोड़ी ही देर में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे, बाल गोपाल।

लड़कनों जय हिंद। बाल गोपाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और आप स्कूल जाने की तैयारियों में जुट गए होंगे। अपने बस्ते अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपनी ड्रेस अच्छे से साफ करके इस्त्री करके रख लीजिए और अपने टाइम टेबल के अनुसार अपने बस्ते को अच्छे से व्यवस्थित कर लीजिए। भाई, स्कूल की छुट्टियां जहां ख़त्म होती हैं वहां एक टेंशन भी होती है कि आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कर चुके हैं कि नहीं, अपने सारी कॉपी किताबें अच्छे से रखी है कि नहीं, अपनी वाटर बॉटल, अपना टिफ़िन, अपना सब कुछ अच्छे से अरेंज करके फिर आप कल स्कूल जाने की तैयारी में जुट जाइए। अभी जब तक छुट्टियाँ थी तब तक आपने खूब मस्ती की, खेले कूदे, कहीं घूमने भी गए होंगे और अपने समय को आपने मोबाइल के साथ भी बिताया होगा। लेकिन अब जब स्कूल खुलने वाला है, पढ़ाई शुरू होने वाली है और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आपको अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने के लिए आपको मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी होगी। अभी तो आप खेलने में मशगूल होते, खेल के लिए आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मोबाइल से थोड़ी सी दूरी, क्योंकि मोबाइल के इस्तेमाल से बहुत सारे नुकसान होते हैं। आपको आपकी टीचर्स भी बताती होंगी, आपके मम्मी पापा भी बताते होंगे, आपके आसपास के लोग भी बताते होंगे। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप पढ़ाई करते समय या खाना खाते समय भी मोबाइल का इस्तेमाल करते होंगे। मोबाइल बिना चलाए आप खाना भी अच्छा नहीं महसूस करते होंगे, तो ये बात थोड़ी अच्छी नहीं है आपके सेहत के लिए भी, क्योंकि जो मोबाइल

0: का इस्तेमाल करते हैं बच्चे ना, उनसे दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है। पढ़ाई के लिए आपके दिमाग को तरोताज़ा करना पड़ेगा, अपने दिमाग को, अपने याददाश्त को तेज करना पड़ेगा और पढ़ाई पर ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। और अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपका जो एकाग्रता है वो भंग होती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है, आपकी आँखों पर भी जोर पड़ता है। और जब आपका आँख का जो विज़न है, जो आपकी दृश्यता है, वो अगर प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से आपकी आंखों पर चश्मा लगेगा। और जब चश्मा लगेगा तो आप जो है पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेंगे। तो आप इस दिक्कत से बचे रहें इसके लिए आपको मोबाइल को एक निश्चित समय बना लें कि इस समय आपको थोड़ी देर के लिए अपना मूड चेंज करने के लिए केवल मोबाइल का इस्तेमाल करना है। और अगर खाली समय मिले तब, और अगर ऐसा कोई होमवर्क मिल जाता है जिसमें कि आपको मोबाइल की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से आप अपने मम्मी पापा से थोड़ी देर के लिए मोबाइल मांग लीजिए और उससे अपना काम कर लीजिए, फिर मोबाइल मम्मी पापा को वापस दे दीजिए। क्योंकि जब आप मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मम्मी पापा को भी बुरा लगेगा, उनको गुस्सा लगेगा, आपको डांट पड़ेगी। तो डांट से भी तो आपका मूड ख़राब होगा, जहाँ मोबाइल के इस्तेमाल से आपका मूड अच्छा होने वाला होगा, वहीं मोबाइल की वजह से अगर डांट पड़ती है तो आपको बुरा भी लगेगा। तो इसलिए आप मोबाइल बहुत थोड़े समय के लिए यूज़ कर लिए, बस जितना ज़रूरी हो उतना ही, और उसके बाद फिर आप अपना काम अपनी किताबों से चलाइए। तो उम्मीद है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अपनी आँखों का, अपने दिमाग का, अपनी याददाश्त का ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और अपने काम को अच्छे से करेंगे। तो चलिए अब इस कार्यक्रम में आपके लिए हम आपको सुनवाते हैं एक कहानी। कहानी सुना रहे हैं समर प्रताप सिंह और कहानी का शीर्षक है मूर्ख चोर।
1: रामपुर गांव में जमोली नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत चतुर था। गांव के सभी लोग उसे जमोली न कह के चतुरी के नाम से बुलाते थे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। वह अपनी जीविका चलाने के लिए किसी बड़े महानगर की ओर पलायन किया। चालाक होने के कारण वह साल भर में ही काफी धन इकट्ठा कर लिया। एक दिन उसने गांव आने का विचार किया। अगले दिन स्टेशन से गाड़ी पकड़कर अपने नगर पहुंचा। नगर पहुंचने पर उसे यह चिंता सताने लगी कि कहीं रास्ते में पास के जंगल में कोई चोर डाकू हमारा धन छीन न लें। अतः अपना धन बचाने हेतु वह तरह तरह की योजनाएं बनाने लगा। अंत में उसने नगर में लगे मेले से एक मरियल गधी खरीद ली और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। अंधेरा होने पर उसने गधी की पूंछ में जगह जगह कई सिक्के बांध दिए। अपना सारा धन सुरक्षित छिपा लिया। जैसे ही वह रामपुर गांव के पास वाले जंगल में पहुंचा, तभी चार चोर उसे घेर लिए। बोले, चतुरी, तू तो बहुत ही चालाक है। शहर में खूब पैसा कमाया होगा, अतः कुछ हमको भी देते जा। चतुरी बोला, नहीं भैया, कई महीनों तक तो काम ही नहीं मिला। किसी तरह एक सेठ के यहाँ दो वक्त खाने का जुगाड़ हो गया था। हमने उसकी काफ़ी सेवा की, इसलिए घर आते समय उसने हमें यह लक्ष्मी दे दी है। अब इसी से हमारी रोजी रोटी चलेगी। चोरों ने उस मरियल गधी को ध्यानपूर्वक देखा और बोले, इससे कैसे तुम्हारी रोजी रोटी चलेगी? यह तो चलने के लायक भी नहीं है। चतुरी बोला, नहीं, धनलक्ष्मी के विषय में ऐसा बुरा शब्द नहीं बोलते। यह कहकर उसने उसकी पूंछ पर छड़ी से मारा, जिससे खनक कर एक सिक्का गिरा। दूसरे चोर ने चतुरी के हाथ से छड़ी को छुड़ाकर पुनः गधी के पूंछ पर एक डंडा मारा, पुनः एक सिक्का गिरा। चोरों को अब विश्वास हो चुका था कि यह सचमुच ही धनलक्ष्मी है। अतः उन्होंने चतुरी से कहा, चतुरी, यह धनलक्ष्मी तुम हमें दे दो और जब तुम्हें कुछ रुपयों की जरूरत पड़ेगी आके हमारे

यहां से ले जाना। चतुरी देना तो चाहता था, किंतु देखावटी मन से उसने धनलक्ष्मी को देने से मना कर दिया। चोरों द्वारा अधिक दबाव दिए जाने पर चतुरी उन्हें धनलक्ष्मी सौंप कर सिर पर पैर रखकर भागा। सभी चोर बड़े खुश थे, धनलक्ष्मी को घर लाए और अपने पत्नी और बच्चों को दिखाने के लिए लक्ष्मी के पूंछ पर एक डंडा मारा। जब तक लक्ष्मी के पूंछ में सिक्के थे तब तक गिरे, बाद में डंडे मारते मारते लक्ष्मी मर गई। सुबह होने पर चोरों को चतुरी की सारी करतूत समझ में आ गई। चोरों ने चतुरी से बदला लेने का विचार किया और अगले दिन रात को चतुरी के घर पहुंचे। इधर चतुरी भी चालाक था, उसे मालूम था कि चोर जरूर मेरे घर आएंगे, अतः वह घर में न सोकर घर के पीछे खेत में सोता था, जिससे सारी बात उसे सुनाई पड़ी। चोरों ने चतुरी का दरवाज़ा पीटा। चतुरी की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, आप लोग कौन हैं, किस लिए आए हैं? चोरों ने कहा, हम चतुरी के मित्र हैं, चतुरी को बुलाओ, हमारा बहुत जरूरी काम है। उसकी पत्नी ने कहा, वो तो खलिहान गए हैं। चोरों ने कहा, ठीक है, उन्हें जल्दी बुलाइए। चतुरी की पत्नी अंदर गई और एक चूहे रूपी देवदूत को डोरे में बंधे लाके छोड़ते हुए बोली, जा चतुरी को बुला के ला। चोरों ने कहा, क्या यह चूहा चतुरी को बुला लाएगा? चतुरी की पत्नी ने कहा, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तभी लगभग आधे घंटे बाद उसी तरह के चूहे को हाथ में लेके चतुरी आया। चोरों ने पूछा, चतुरी तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम लोग तुम्हारे घर आए हैं? चतुरी ने कहा, यह देवदूत ने मुझे बताया और मैं तुरंत वहां से चल पड़ा। चोरों ने कहा, चतुरी, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, धन तो हम किसी और घर से ले लेंगे, यह देवदूत तुम मुझे दे दो। चतुरी देवदूत तो देना चाहता था, लेकिन दिखावटी बहाना किया, नहीं, यह देवदूत हम नहीं दे सकते। चोरों ने कहा, दे दो। अंत में जब उसके बच्चे के ऊपर तलवार रख दिए, तब चतुरी ने देवदूत को बुझे मन से कहा, ले जाइए भैया। इधर देवदूत को पाकर सरदार इठला रहे थे, अपनी पत्नी से बोले कि मैं जा रहा हूँ मीटिंग करने, जब खाना बन जाएगा दूत को भेजकर मुझे बुला लेना। इधर खाना बन के तैयार हो गया। सरदारिन ने देवदूत को बोला, जाओ सरदार को बोल दो खाना तैयार हो गया है। वो चूहे की जात कहीं गुम हो गया। सरदार काफ़ी देर तक इंतजार करते रहे, अंत में रात को घर पहुँचे। सरदारिन सो रही थी और दरवाज़ा खोलने पर उन्हें पीटा भी। इस तरह उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, वरना एक चूहा कैसे दूत का काम कर सकता है। चोरों ने चतुरी से बदला लेने का प्लान बना लिया कि अब चतुरी की किसी बात का कोई भरोसा नहीं करना है। ठंड का मौसम था, चतुरी लकड़ी और कुल्हाड़ी लिए बैठा था, कुछ लकड़ियां चीर रहा था। 6 बजे थे लगभग, चतुरी के सामने चोर आके बैठ गए और बोले, चतुरी कुछ पैसा हमें दे दो। चतुरी ने अपनी पत्नी को बाहर से आवाज़ लगाया, जो कुछ धन मैं कमा के लाया हूँ वो दे दो। उसकी पत्नी बोली, नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं तो इसके गहने बनवाऊंगी। अब पति पत्नी आपस में झगड़ा करने लगे, तभी चोरों ने चतुरी को पकड़कर एक बोरे में बंद कर लिया और बंद करके नदी में फेंकने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुत्तों के भौंकने की आहट सुनाई दी और वो बोरे को वहीं पटक कर दूर भाग खड़े हुए। तभी तेजी से भौंकता हुआ एक कुत्ता आया, उसके साथ एक आदमी भी आ रहा था। कुछ भेड़ और बकरियों की भी आवाज़ आ रही थी। चतुरी चालाक था, उसने भाप लिया, जरूर यह गड़ेरिया ही है। वह बोरे के अंदर जोर से चिल्लाया, मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। वह आदमी पास आया, बोला, भैया क्या नहीं करनी है? चतुरी बोला, भैया मुझे शादी नहीं करनी है। गड़ेरिया बोला, क्यों नहीं करनी है? किसी की तो हो नहीं रहे और आपकी हो रही है, तो आप कर नहीं रहे हैं। उसने बोला, भैया कैसे कर लें, दो दो शादी हुई है, तीसरी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं। गड़ेरिया बोला, भैया मेरी तो एक भी शादी नहीं हुई है। चतुरी बोला, देखते क्या हो, बोरे का मुंह खोलो और इसके अंदर बैठ जाओ, कुछ बोलना नहीं, चुपचाप बैठे रहना।

0: सुबह तुम्हारी शादी हो जाएगी। चतुरी के कथनानुसार गणेरिये ने वैसे ही किया। कुछ देर बाद चोर आए और बोरे को उठाकर नदी में फेंक दिए। इधर चतुरी गणेरिये की भेड़ और बकरियां हाँककर अपने घर गया और खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिनों बाद चोर गांव में घूमने निकले तो देखे चतुरी बकरी का दूध निकाल रहा था। चोरों ने पूछा, चतुरी हम तो तुमको नदी में फेंक दिए थे, ये तुम भेड़ बकरियां कहाँ से इतना ज़्यादा पाए? उसने बोला, तुम लोगों ने तो मुझे उथले पानी में फेंका था, यदि गहरे पानी में फेंकते तो मैं हाथी घोड़ा पाता। चोरों ने कहा, चतुरी हमें भी हाथी घोड़ा दिला दो। बोला चतुरी बोला, क्या तुम मुझे हाथी घोड़ा दिलाने ले गए थे? तुम तो मेरी जान लेने गए थे। उसने कहा, अब बुरा मत मानो, हमें भी हाथी घोड़ा दिला दो। तो चतुरी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं किसी को लाद कर नहीं ले चलूँगा। सब लोग अपना अपना बोरा आओ ले आओ और नदी के किनारे चलो। इस तरह चारों चोर अपने लिए गए बाजार से एक बोरा लेके नदी के किनारे पहुँचे। चतुरी ने कहा, मैं केवल एक आदमी को फेंकूंगा, बाकी आपस में आप लोग एक दूसरे को फेंक दे। इस तरह सरदार ने तीनों चोरों को उथले पानी में फेंका और जब सरदार की बारी आई तो उन्होंने चतुरी से बोला कि चतुरी मुझे खूब गहरे पानी में फेंकना जिससे कि मैं हाथी घोड़ा पा सकूं। चतुरी ने कहा, ठीक है सरदार, और चतुरी ने सरदार को गहरे पानी में फेंक दिया। इस तरह चतुरी अपनी बुद्धिमानी से उन चोरों से छुटकारा पा लिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें कष्ट में भी अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए।
1: तो बच्चों, उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम आपसे कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और स्कूल में खूब अच्छे से पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय हिंद।

0: अभी ग्रामीण बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल गोपाल, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कभी आपने गौर किया है क्या कि जिंदगी कितनी तेजी से बदल रही है? कल तक जो चीजें हमारे लिए नई थीं, आज वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। समय के साथ बदलाव आना प्रकृति का नियम है और ये हम सभी जानते हैं। बहुत हुआ हम कहते थे कि पानी ही स्वच्छ है, लेकिन जो समय के साथ चलना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। बहता हुआ पानी ही स्वच्छ रहता है, हम ये कहते हैं ना। ठहरा हुआ पानी हमेशा उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। वैसे ही जीवन हमेशा चलता हुआ ही रहना चाहिए, क्योंकि चलते हुए जीवन में ही हमें सीख मिलती है और आगे बढ़ने की हमारे अंदर समझ होती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या हर बदलाव हमारे लिए अच्छा हो

होता है? क्या हर नई सुविधा हमारे जीवन को बेहतर बना देती है, या कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम पीछे छोड़ जाते हैं? जैसे कि क्या हर नया खरीदा हुआ कपड़ा हमारे स्किन को सूट करेगा? शायद नहीं, हर किसी की स्किन टाइप अलग अलग होती है। जैसे कि किसी को कॉटन सूट करता है, किसी को सिल्क सूट कर जाता है, कोई हर तरीके के कपड़े पहन लेता है, या कोई सिर्फ खादी पहन सकता है। मेरा खादी कहने का मतलब ये था कि कुछ लोग बदलाव सहन ही नहीं कर पाते। इन्हीं कुछ विचारों के साथ मैं दिव्या द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे प्रोग्राम युववाणी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, बदलती जीवन शैली और इसका प्रभाव। आज का युवा पहले से कई अधिक जागरूक, महत्वाकांक्षी और तकनीकी रूप से सक्षम है। टेक्नोलॉजी को समझने की उसके अंदर समझ है। हमारे पास जानकारी जो है वो अथाह है। हर तरीके की सोर्स हमारे हाथों में लग चुके हैं। टेक्नोलॉजी का हर

हुआ है, बदलती जीवन शैली और इसका प्रभाव। आज का युवा पहले से कई अधिक जागरूक, महत्वाकांक्षी और तकनीकी रूप से सक्षम है। टेक्नोलॉजी को समझने की उसके अंदर समझ है। हमारे पास जानकारी जो है वो अथाह है। हर तरीके की सोर्स हमारे हाथों में लग चुके हैं। टेक्नोलॉजी का हर अच्छा जरिया हमारे पास है। दुनिया के किसी भी कोने की खबर हम कुछ ही सेकंड में चुटकी बजाते ही हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा हो, डिजिटल बैंकिंग हो, वर्क फ्रॉम होम हो, ई कॉमर्स हो, सोशल मीडिया हो, हम सभी चीज़ों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और सोशल मीडिया ने तो हमारे जीवन को पहले से और कई ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया है भाई। आज हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए अवसर खोज पा रहे हैं। छोटे से बड़े शहर की ओर हम हर तरफ देख पा रहे हैं कि इंटरनेट की मदद से दुनिया भर की जानकारी प्राप्त की जा रही है। निश्चित रूप से बदलती जीवन शैली एक सकारात्मक पहलू ज़रूर है, लेकिन दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक ओर तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर हमारी दिनचर्या को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। आपको नहीं लगता क्या? चलिए मैं गौर करवाती हूँ आपको। पहले लोग सुबह जल्दी उठते थे, सैर पर जाते थे, परिवार के साथ बैठते थे, समय बिताते थे। आज कई लोगों की सुबह मोबाइल नोटिफिकेशन से शुरू होती है और रात सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते करते ख़त्म होती है। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते। भाग दौड़ भरी जिंदगी में आराम, संतुलन और मानसिक शांति जैसे सिर्फ एक शब्द बन के रह गए हैं और कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हम एक बात हम अपने बड़ों से हमेशा सुनते आए हैं कि आजकल का माहौल अच्छा नहीं है, चीज़ें उतनी शुद्ध नहीं मिलती हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि पहले जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे उन्होंने शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन सब कुछ पाया है। लेकिन हमारे टाइम पे हम तो ऑर्गेनिक लिखी हुई चीज़ों पर भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शायद उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल मिले हुए हैं और यही हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। बदलती जीवन शैली का प्रभाव यहाँ भी साफ दिखाई दे रहा है। फास्ट फूड, अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जागना और शारीरिक गतिविधियों की कमी कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रही है। युवाओं में तनाव, चिंता और थकान जैसी समस्याएं पहले की तुलना अधिक देखने को मिल रही है। बहुत ही कम सुना होगा कि हमारे दादी बाबा के ज़माने में किसी को शुगर, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो रहा हो, लेकिन आज एक छोटे से बच्चे से भी पूछो तो वो चॉकलेट, टॉफ़ी या किसी मीठी चीज़ को अवॉइड करता हुआ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि शायद उसको भी डायबिटीज़ है, उसे भी इंसुलिन प्रॉब्लम है, उसे भी बीपी की प्रॉब्लम है। ये भी तो बदलती जीवन शैली का प्रभाव ही है ना, कहीं ना कहीं। वहीं दूसरी तरफ एक सकारात्मक बदलाव ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति पहले से अधिक जागरूक दिख रहे हैं। माना कि बदलती जीवन शैली की वजह से जो चीज़ें हैं वो अशुद्ध हो चुकी हैं, थोड़ी सी अनफिल्टर्ड हो चुकी हैं, और या ये कहें कि चीज़ों में थोड़ी बहुत खराबी आ गई है, दिनचर्या भी अस्त व्यस्त हो रही है। लेकिन फिर भी लोग फिटनेस की ओर ध्यान दे रहे हैं। योगा के साथ जिम, साइकिलिंग, रनिंग, हेल्दी डाइट जैसी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल बना रहे हैं। लोग मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हमारे पहले के ज़माने में हम कई सारी ऐसी मिथ्याएं हमारे जीवन में फैली हुई थी कि हम लोग कुछ चीज़ों पे खुलकर बात नहीं करते थे, जो कि आज के समय में हम अपने पेरेंट्स से, अपने समाज में लोगों के बीच पे बैठ के उस विषयों पे बात कर पा रहे हैं। ये भी बदलती जीवन शैली का एक प्रभाव है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अभी बातें तो हमारे बीच अभी बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले कुछ मस्ती धमाल, कुछ म्यूजिकल हो जाए।

तो दोस्तों, म्यूजिकल ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बदलती जीवन शैली और उसके प्रभाव के बारे में। बदलती जीवन शैली का प्रभाव केवल हमारे स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। लोग पहले एक दूसरे से मिलने के लिए समय निकालते थे, घंटों तक बातचीत करते थे, ठहाके लगाते थे। आज हम डिजिटल रूप से जुड़े हुए तो हैं सबसे, लेकिन कई बार भावनात्मक रूप से दूर हो चुके हैं। हजारों ऑनलाइन मित्र हैं हमारे, इसके बावजूद भी अकेलापन का एहसास बढ़ता जा रहा है। वो आपने ड्रीम गर्ल फिल्म देखी होगी ना, कि आपके पास ऑनलाइन दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि हम तकनीक का उपयोग तो ज़रूर करें, लेकिन रिश्तों की गर्माहट भी बनाए रखें। परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, दोस्तों से मिलना और अपने प्रियजनों से बात करना और उन्हें सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिंदगी के लिए सांस लेना। बदलाव को रोकना संभव नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बदलाव ही विकास की पहचान है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम बदलाव को समझदारी के साथ अपनाएं। क्या जरूरी है, क्या गलत है, इसके बीच का फर्क समझें। हमें ये तय करना होगा कि तकनीक हमारी मदद करे, ना कि तकनीक के गुलाम बन के रह जाएं। हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों और अपनी मानसिक संतुलन पर भी ध्यान देना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम पुराने समय में लौट जाएं या बल्कि उसके बारे में हम ज़्यादा सोचें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम आधुनिकता और मानवीय मूल्यों के बीच की एक सुंदर संतुलन को स्थापित करें। नई तकनीकों को अपनाएं, लेकिन संवेदनशीलता को ना छोड़ें। सपनों का पीछा जरूर करें, लेकिन अपनों का हाथ ना छुड़ाएं। सफलता को हासिल जरूर करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भी उतना ही महत्व दें, क्योंकि आखिरकार जीवन की असली खूबसूरती केवल आगे बढ़ने में नहीं।

है बल्कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने में है। और हमारी जीवन शैली हमें बेहतर इंसान बनाए, स्वस्थ बनाए और समाज से जोड़कर रखे, तभी वो वास्तव में सार्थक होती है। यही सोच, यही संतुलन और यही जागरूकता आगे वाले भारत के युवाओं को सबसे बड़ी ताकत दे सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि हमारा जो युवा है वो इस बदलाव को सही दिशा में ले जाने की ओर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। याद रखिए, एक सफल जीवन केवल उपलब्धियों से नहीं बनता बल्कि संतुलन से बनता है। अगर हमारी प्रगति के साथ हमारी खुशियाँ, हमारा स्वास्थ्य और हमारे लोग भी हमारे साथ चलेंगे ना, तो वो जीवन वास्तव में खूबसूरत लगने लगेगा। और बदलती जीवन शैली को अपनाइए, नए अवसरों का स्वागत कीजिए, लेकिन अपनी जड़ों, अपने संस्कारों और अपनी मेहनत को भी, अपनी सेहत को भी मत भूलिए। आधुनिकता और संतुलन का मेल ही एक बेहतर जीवन की पहचान है।

तो दोस्तों, गीत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कार्यक्रम में, और हर बार हर रविवार हम लेकर आते हैं कुछ खास अपने दोस्तों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद खास सेगमेंट, हेलो युवा, जिसे प्रस्तुत करने जा रही हैं साक्षी पांडे, और प्रस्तुति है भूपेंद्र कुमार मिश्र की। आइए सुनते हैं।

0: हेलो युवा, दिल थाम के बैठिए, धड़कनों को थाम लीजिए और वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब फिर से हर वीक की तरह वक्त हो गया है आपकी फरमाइशों का और ढेर सारी बातों का वक्त, क्योंकि मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेलो युवा लेकर। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट साक्षी पांडे। आज के इस खूबसूरत दिन में कौन कौन से नए तराने बजने वाले हैं, ये तो तय करेंगे आप। तो उठाइए अपना फोन और लगाइए हमें कॉल, क्योंकि आपकी फरमाइशें ही तो इस महफिल की जान है। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारी फोन लाइंस पर। हमारा नंबर है 0532242364 9, और हमारा एक और नंबर है जो कि है 0532297-0462 पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं हर गुरुवार दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच। हेलो डियर लिसनर, स्वागत है आपका आकाशवाणी प्रयागराज में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं ललित किशोर शर्मा, इलाहाबाद से।
0: तो ललित, आपका नाम तो बहुत प्यारा है ललित। तो ललित, आप रेडियो सुनते हैं?
1: जी
0: क्या क्या प्रोग्राम सुनने पसंद है आपको? कोई खास प्रोग्राम या संगीत के लिए सुनते हैं आप प्रोग्राम?
1: जी, संगीत काफी अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, तो किस तरह के गाने पसंद है आपको?
1: आप बॉलीवुड है जिसमें रोमांटिक हो, इमोशनल हो, इस तरह के गाने काफी।
0: अच्छा, तो ललित क्या करते हैं आप?
1: जी, मैं जो है जर्नलिज्म किया हूँ, तो पढ़ाई की उसके बाद जॉब भी करता हूँ अब।
0: मतलब आप वर्किंग हैं, तो ठीक है।
1: जी
0: ललित, कुछ आपके जो अनुभव हैं, जो आपने कहा कि आपने जर्नलिज्म किया है, तो रेडियो भी एक उसी का माध्यम है,
1: जी
0: तो आप कुछ हमसे शेयर करना चाहते हैं जो आपके अनुभव हैं?
1: देखिए, अनुभव यही है कि जिस तरह से मैंने किया है, जैसे पढ़ाई की उसके बाद जॉब, तो ये चीज इसमें एक चीज जो है कॉमन आती है कि कठिनाइयां हर जगह होती हैं। ठीक है, शुरुआत में प्रेशर होता है कि आपको नंबर्स लेके आने हैं कॉलेज में, आपको टॉपर बनना है। जब आप जॉब में आते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, आपको सबसे आगे रहना है, अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन कठिनाइयां दोनों जगह होती हैं, मेहनत दोनों जगह करनी होती है। तो यही है कि अगर मेहनत आप सही दिशा में कर रहे हो तो चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई भी रिश्ते हो, वो आपको सफल बनाएंगे।
0: अगर ललित आपकी कोई फरमाइश हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपका सॉन्ग प्ले करेंगे आपके लिए।
1: जी, तो अगर आप प्ले करना चाहती हैं तो वो सॉन्ग है कि तुम ही हो।

0: हेलो डियर लिसनर्स, स्वागत है आपका आकाशवाणी प्रयागराज में।
1: हेलो,
0: हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मेरा नाम स्तुति है और मैं प्रयागराज से ही बोल रही हूँ।
0: अच्छा, तो आप प्रयागराज से हैं। तो स्तुति,
1: जी
0: आपको म्यूजिक सुनना पसंद है?
1: जी मुझे म्यूजिक सुनना, मूवीज देखना बहुत पसंद है ये सब।
0: तब तो आप रेडियो भी सुनती होंगी।
1: जी बिल्कुल।
0: आपने कहा कि आपको मूवीज भी देखना पसंद है, तो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि जो मूवीज हैं उनका हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है?
1: कि जो मूवीज होती हैं या फिल्में होती हैं या हमारा जो सिनेमा है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने में।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हमने कई बार देखा है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक हीरो या हीरोइन को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। सिनेमा राष्ट्र निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका अदा करता है, तो उसका भी तो असर पड़ेगा ना हमारी सोसाइटी पर।
0: जी। तो स्तुति, आपने कहा कि आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो
1: जी
0: स्तुति आपकी कोई फरमाइश है जो आप प्ले करवाना चाहती हैं रेडियो पे?
1: जी आप मुझे सुना दीजिए फिल्म जोधा अकबर में एक गाना है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा।

0: हेलो डियर लिसनर, स्वागत है आपका आकाशवाणी प्रयागराज में।
1: हाय, मेरा नाम काव्या सोनी है और मैं प्रयागराज से हूँ।
0: हाय काव्या, बहुत प्यारा नाम है आपका। तो काव्या,
1: थैंक
0: आप
1: यू।
0: रेडियो सुनती हैं?
1: एक्चुअली हमेशा मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मैं बचपन से रेडियो ही सुनती आ रही हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं स्कूल से घर आती थी तो छोटा वाला फोन होता था, कीपैड वाला, और मैं वो लगाकर ईयरफोन लगा के सुनती थी। और मैं टीवी इतना नहीं देखती रही हूँ हमेशा से, बट रेडियो हमेशा से सुना है मैंने।
0: बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप बात कर रही हैं एकदम एक्साइटेड होके, मुझे लग रहा है कि आपको रेडियो सुनना काफी ज्यादा पसंद है। तो
1: चलो, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा कॉल लगा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा फेवरेट गाना जरूर अपने कार्यक्रम में
0: जी,
1: बताएंगे।
0: मैं आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि आपकी कोई फरमाइश है, हम आपके लिए जरूर प्ले करेंगे आपका फेवरेट सॉन्ग।
1: थैंक यू।
0: तो कोई फरमाइश है आपकी?
1: इमरान हाशमी मेरे हमेशा से फेवरेट रहे, तो आप उनकी फिल्म का कोई भी गाना बजा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।
0: ओके, बिल्कुल। थैंक यू
1: थैंक यू।
0: काव्या।
1: थैंक यू।

तो दोस्तों, आज की महफिल में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे साथ गपशप करने और अपनी फरमाइश के गाने सुनने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आप तक इन्हें पहुंचाने में। याद रखिए, जिंदगी एक सफर है और संगीत इसका सबसे अच्छा साथी है। अपनी मुस्कान को ऐसे ही बनाए रखिए। मैं जल्द ही लौटूंगी फिर से नई मस्ती और नए गानों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज। और हाँ, आप हमें कॉल करना ना भूलें। हर गुरुवार दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच हमारे फोन इन नंबर पर, जो कि है 0532-242-3649 पर। हमारा एक और नंबर है जो कि है 0532-297-0462 पर। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
6: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
5: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य।

0: भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
1: तो दोस्तों, इस ब्रेक से पहले हम सुन रहे थे हेलो युवा, प्रस्तुत कर रही थी साक्षी पांडे और प्रस्तुति थी भूपेंद्र कुमार मिश्र की। और अब हम कार्यक्रम में अपने आगे बढ़ते हैं और हर बार हम आपके अपने श्रोताओं के लिए अपने लेकर आते हैं एक सेगमेंट प्रश्नकाल, जिसमें हम पूछते हैं प्रश्न और हमारे जो श्रोता साथी होते हैं वो उससे जुड़कर अपने उत्तर हम तक पहुंचाते हैं। तो पिछली बार का यानी कल का जो हमारा प्रश्न था वो था, भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा है? तो इसका उत्तर है, भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर गलियारा जिसे कहते हैं, तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है रामनाथ स्वामी मंदिर के पास का गलियारा है। ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1220 मीटर यानी करीबन 3850 फीट की है। तो हमारे जो श्रोता साथी हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनके नाम हैं रिद्धि जायसवाल, नीता गौरी, चिन्मय राउत, आविष्कार सिंह, निरंजन गोरपोरकर और प्रतीक्षा शर्मा। आप सभी का धन्यवाद जो आपने हमारे कार्यक्रम से जुड़कर हमें अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाई। और आज का जो प्रश्न है श्रोताओं वो है, भारत में शून्य का सबसे प्राचीन अभिलेख प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? मैं प्रश्न फिर से दोहराती हूँ, भारत में शून्य का सबसे प्राचीन अभिलेख प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? आप अपने प्रतिक्रिया हम तक साझा कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के जरिए और व्हाट्सएप नंबर के जरिए, जो कि है yuvvaniald@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8004926250 पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट प्रेरणा पुंज के साथ। दोस्तों, आज के प्रेरणा पुंज में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जो कम बोलते थे लेकिन उनके फैसलों की गूंज पूरे देश में सुनाई देती थी। एक ऐसे नेता जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी भारत की कमान संभाली रखी और देश को नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। कहते हैं कि असली नेतृत्व वही होता है जो मुश्किल समय में रास्ता दिखाए। वर्ष 1991 में भारत के एक गंभीर आर्थिक संकट से जब गुजर रहा था तो देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार बेहद कम बचा था और आर्थिक स्थिति चिंताजनक हो चुकी थी। ऐसे समय में पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना में जन्मे नरसिम्हा राव का बचपन साधारण सा था लेकिन सीखने की ललक असाधारण थी। उन्हें भाषाओं का विशेष प्रेम था और कहा जाता है कि वह कई भारतीय और विदेशी भाषाओं के ज्ञाता थे। पढ़ाई, लेखन, चिंतन उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। राजनीति में उनका सफर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उन्होंने राज्य स्तर पर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी पहचान थी वो तब बनी जब वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी। उनके नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। उद्योग, व्यापार, निवेश के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। इन्हीं कदमों में आगे बढ़ता हुआ हमारा भारत भी वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का उसी वक्त प्रयास किया गया। दिलचस्प बात यह थी कि नरसिम्हा राव को अक्सर एक शांत और गंभीर नेता के रूप में देखा जाता था। साथियों, पीवी नरसिम्हा राव की कहानी हमें यही सिखाती है कि शांत रहकर भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है और हर सफलता के लिए शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी धैर्य, ज्ञान और सही समय पर सही लिया गया निर्णय ही इतिहास रच देता है। तो श्रोताओं, ये थे हमारे प्रेरणापुंज पीवी नरसिम्हा राव। अब हमारा प्रोग्राम समाप्ति की ओर है श्रोताओं, लेकिन चलते चलते थोड़ी बातचीत हम बस आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत ही तेज़ी से मौसम बदल रहा है, कभी बारिश होने लगती है, कभी तेज़ धूप निकलती है, तो ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। डिहाइड्रेट नहीं हो, पानी की बॉटल अपने साथ रखें और जब भी ऐसा लगे कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ रहा है तुरंत डॉक्टर से अपनी जांच करवाएं। ओआरएस की एक पैकेट अपने साथ हमेशा रखें क्योंकि ओआरएस से आपको कभी भी ऐसे जो अचानक से थकान होने लगती है, कमज़ोरी होने लगती है, वो नहीं होगी। साथ ही साथ अपने साथ साथ

0: अभी युवजन अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने वाले हैं कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले

गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे सूर्यगढ़ में ठीक 6:05 हुए हैं। ये समय है आपको जानकारी देने का आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। पहले आज के शेष कार्यक्रम, आज शाम 6:30 से आप सुनेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ओल्ड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और अब कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र से बातचीत, अश्वगंधा और सर्पगंधा की खेती। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा 6:45 पर। कल सुनवाएंगे डॉक्टर राधा रानी घोष की वार्ता, बोन कैंसर कारण लक्षण और उपचार। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का 393वां भाग सुनवाएंगे 7 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर सुनेगा पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन। 12:15 पर आपको सुनवाएंगे पंडित अनंत लाल का शहनाई वादन और रात 10:30 पर सुनेगा पंडित उमा शंकर का सितार वादन।

नमस्कार प्रयागराज, इस कार्यक्रम के साथ जुड़िएगा सुबह 8:45 पर और वॉइस ऑफ प्रयागराज में आपसे बातें करेंगे 10:05 पर और सुनवाएंगे खूबसूरत नगमे। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 9:50 पर, कलाकार होंगी अर्चना दास और शाम 7:45 पर आपको सुनवाएंगे करिश्मा के स्वर में भजन और गीत। लोकगीत सुनवाएंगे 10:30 पर, कलाकार होंगे प्रीतम सिंह और साथी और नाना श्याम। 11:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा जो केंद्रित होगा एक ही कलाकार पर। महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी 1:15 पर होगा। बहनें सुनेंगी जायका के अंतर्गत मसालेदार भरवा प्याज की रेसिपी और फैशन के अंतर्गत सुनवाएंगे कंचन और संगीता श्रीवास्तव की बातचीत फैश पहचान प्रदर्शन और मनोविज्ञान और निखार में बताएंगे नेचुरल फेस मास्क के बारे में। बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया से शुरू होगी हमारी सायंकालीन सभा 5:00। बच्चे सुनेंगे आओ जाने के अंतर्गत दुनिया में सबसे ठंडे और सबसे गर्म स्थानों के बारे में। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी होता है शाम 5:15 पर। युवजन सुनेंगे अक्षत शुक्ल की वार्ता संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की आवश्यकता। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे शिवलाल केसकर से लोक भाषा कविता पाठ और प्रीतम सिंह और साथियों के स्वर में लोकगीत। शाम 7:30 पर होगा हिंदी कार्यक्रम। कल इसमें आप सुनेंगे शशि शेखर पांडे की वार्ता सोशल मीडिया के दौर में हिंदी भाषा के समक्ष चुनौतियां। गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम का समाप्त फरमाइएगा 9:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

कार्यक्रम समिति एक सूचना। दिनांक 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970-462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 0532-2970-462 और 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं और अब आइए सुनते हैं समूह स्वरों में देशभक्ति रचना।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् स्वदेशी प्रतिरक्षोत्पादने सविशेषं बलं विधाय भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञभावं ज्ञापितम्। यतो हि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता। सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तायाः अनन्तरं भारत सेशेल्स देशयोर्मध्ये स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अंतरिक्षादि विविध विषयेषु महत्वपूर्ण सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रशासनेन भारतीय नागरिकाः संचेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्रां न आरभेरन्। पश्चिम एशिया देशे सुरक्षा स्थितिः तीव्र गत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानः उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्। अपि च आईसीसी महिला T20 विश्व कप स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिला दलम् अद्य लंडन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्ट। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता, यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसंपन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि 40 विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारंभं विदधाति।
2: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षं न्यगादीत् यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना संबंधी कार्यक्रमं संबोधितवान्, यत्र INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्र

0: उपायश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
1: कोलकाता में INS दुर्गागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामि गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्यरूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्। सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्तिनिर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मयमूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिः पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्ण क्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ। सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च स्वस्व मनोगतं विनिमयी कृतवन्तौ। तस्मात् पूर्वं सेशेल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्ड्स ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अयं गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मानः मम कृते अथ भारतस्य नागरिकाणां कृते परम गौरवस्य विषयो वर्तते। प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् द्वयोर देशयोर दूरत्वं न्यूनीकर्तुं डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभावपूर्णं माध्यमं वर्तते। तेन एतदर्थं प्रसन्नता प्रदर्शिता यत् अद्य सेशेल्स देशे भारतस्य UPI तन्त्रस्य प्रवर्तनाय एकस्मिन् सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं क्रियमाणमस्ति। विदेश मन्त्रालयेन भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् सम्पूर्ण यात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाश मानसरोवर यात्रा न क्रियन्ताम्। केचन भारतीय तीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन्, सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः। एतां घटनामुद्दिश्य विदेश मन्त्रालयेन एषः परामर्शः प्रख्यापितः। पश्चिम एशिया क्षेत्रे सुरक्षा स्थितिः पुनरपि गभीरा जाता। अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये विद्यमानः युद्धविरामः खण्डितः। गतकतिपय होरासु च उभय पक्षाभ्यां परस्परं नूतनानि सैन्याक्रमणानि कृतानि। तेहरानेन वाणिज्यिक तैलवाहकपोतस्य उपरि ड्रोणाक्रमणं विहितमिति आरोपं विधाय अमेरिकया होर्मुज जलसन्धेः समीपे स्थितेषु दशसु ईरानी सैन्यस्थानकेषु वायुप्रहाराः कृताः।

0: before this game, so it's built up really nicely for us. And
1: enjoy all the magic of the home of cricket.
0: Yeah.
1: All the best, Soph.
0: Thanks, Jonesy.
1: Well, India have won the toss today and they'll be batting first in this crunch match.
2: हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता है और भारत पहले बल्लेबाजी करेगा. सौमित्र, हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है, कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप?
3: पहले तो दोनों कैप्टन खुश है, हरमनप्रीत बैटिंग करेंगे और इंडिया बैटिंग करेंगे और वो बॉलिंग करेंगे. और टीम चेंजेस में आपको दिख रहे हैं कि फिबिलिशफील्ड को वापस आना ऑस्ट्रेलियन टीम में बोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज शी इज गॉन एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट. तीन मैचेस नहीं खेले हैं वो अभी तक, सो ही एब्सोल्युटली फ्रेश, इंजरी थी, नहीं पाएंगे. सो दिस इज अ बिग मैच फॉर हर और शी कैन बी द इम्पैक्ट फैक्टर, जैसे आपने बोला. ये इस तरह का मैचेस में जैसे 170-180 जो रिकॉर्ड्स दिखता है लॉर्ड्स में ऐसा ही, बट इवन इंडिया कैन स्कोर 170-180 दैट विल बी अ वेरी गुड स्कोर. हरमनप्रीत का बैटिंग इज लार्जली बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रांग इन आवर बैटिंग, ऑल्दो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन आवर स्कोरिंग स्पेशली मिडल ऑर्डर. और हरमनप्रीत को आज शी कमिट द मैच, कमिट द वुमन, सो शी हैज टू बी द वुमन बिकॉज इस तरह का मैचेस में अगेन ऑस्ट्रेलिया, इफ इज वन पर्सन दैट ऑस्ट्रेलिया फियर्स इज हरमनप्रीत. और इस मैच में उनको आज कैप्टन्स नॉक खेलना है कि 85 रन्स इन फोर मैचेस इज नॉट व्हाट द हरमनप्रीत वी नो अबाउट. तो आज का मैच में उनके लिए बहुत ज़रूरी है और सारे टीम के लिए ज़रूरी है, मगर प्रेशर नहीं. शी यूज द वर्ड एन्जॉय, लेट्स सी हाउ मच एन्जॉय.
4: रविंदर, हमने तब्दीलियों का जिक्र किया, आज के इस मुकाबले में भी एक बदलाव है. नंदिनी के जगह पर क्रांति गौड़ को मौका मिला है. पेस डिपार्टमेंट में खास करके स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली है.
5: बिल्कुल, जिस हिसाब से ये जो बॉलिंग अटैक चल रही, बॉलिंग अटैक था उसमें बिल्कुल चेंजेस, हर मैच में चेंजेस चल रहे थे, तो ये एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि विकेट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सीम हो रहा है जैसे बताया हरमनप्रीत ने, तो उनको लगा क्रांति गौड़ इसमें शायद ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगी. लेकिन जो मेन इनका अटैक रहेगा वो चरनी के आसपास ही घूमेगा क्योंकि चरनी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और वो एक तरह का मैच डिसाइड करती है कि मैच का पड़ा किस तरह मुड़ता है.
2: ख्याति, अगर दोनों टीमों की बात करें तो 38 T20 मुकाबले दोनों टीमों के बीच हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 27 जीते हैं, भारत ने 10 में विजय प्राप्त की है और एक मैच बेनतीजा रहा है, परिणाम नहीं निकला है. जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने होते हैं और ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हम इसे कह सकते हैं, किस तरीके का टोटल होता है? क्या जो टीम मीटिंग टॉस जीतने के बाद होगी उसमें इस पर चर्चा होगी, चूंकि आप कोच भी रह चुकी हैं डोमेस्टिक सर्किट में, या फिर ये होगा कि पहले पावर प्ले देखते हैं उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे?
6: डेफिनेटली उन्होंने डिस्कस तो किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि विदाउट एनी टारगेट दे विल गेट इन टू द पिच डायरेक्टली. बट आई थिंक इट विल बी कॉन्टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट, बॉल टू बॉल कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन बोथ द टीम्स, बैटर टू बॉलर एंड बॉलर टू बैटर. एंड आई थिंक 160-170 शुड हैव बी अ गुड स्कोर, दे मस्ट हैव डिस्कस दिस थिंग. Otherwise, you will not give the cushion to your bowlers. You have to give the cushion to your bowlers also. आपको अगर उस तरीके की गेम खेलनी, आपको हमेशा सेट होने, अगर सेट होते आपके बॉलर्स या आपके बैटर्स, डेफिनेटली आई थिंक तब आप ये सोच सकते हो कि वहाँ जाके आप पावर प्ले देखें. लेकिन अभी तक कुछ भी सेट नहीं है पावर प्ले में. एवरी टाइम इनका जो स्कोर है उस तरीके का नहीं चल रहा कि जैसा एक्सपेक्टेड है. जो द वे वी ऑल्सो टॉक टू द प्लेयर्स कि आपका 6 ओवर्स में 50 रन हो इस तरीके से, बट आई थिंक एक 160 का स्कोर एक पार, आई थिंक इट विल बी अ गुड स्कोर.
4: Sumitro, heading into the World Cup, the concern was more around the openers because they were struggling in that series against England. But now it's more around the wobbly middle order.
3: Absolutely, because if you see, first of all, you have to forget what you've done in the last 4 matches. Especially, you know, when you play in Netherlands, and they are more like warm matches with all regards to those teams. But the point today is the big match. Or agar aap is level pe matches dekhe, India have always lost these kind of matches against Australia. It doesn't mean, again, history does not mean anything else. But the point is this, aaj agar aap dekhega, who bats at number 3, who bats at number 4, where does Harmanpreet bat? Up 6, she has batted at 6, she has batted upper. So India have got a very unsettled look about them, which is very, very striking for a team that has won a World Cup. And the coach at the core of the team remains the same. The coach remains the same. In spite of that, we still don't know. Aapne jaise pehle bola ki 16 players hum 4 matches mein khila diye. That means that's not a good sign. Plus, you know, there are other concerns, fielding concern. But I would like to see who bats at number 3. I'm as

0: Assuming कि South Africa, which was the biggest match so far, who Yastika batted there. She's a left-hander और उनके पास leg spinners बहुत हैं. शायद यही batting देखेंगे. But I also want to see where does Harmanpreet bat, how much of responsibility takes, because when the captain takes a responsibility and she scores the runs, I think that makes a big difference. और openers जैसे आपने कहा, they are fairly alright. Smriti Mandhana is among the top scorers. Shefali has got runs, but yes. The performance of the middle order will be very, very critical.
1: रविंदर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जमीमा की भी फॉर्म इस पूरे टूर्नामेंट में सवालिया निशान पर रही है. साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यास्रिका भाटिया और भारती फूलमाली में भी चर्चा हो रही थी कि शायद उनको इस मैच में वापस लाया जाए प्लेइंग 11 में, लेकिन यास्रिका के साथ गई है हरमनप्रीत कौर की टीम. अगर हम बात करें किस तरीके का टीम में माहौल होगा इस समय, चूंकि नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 कहीं ना कहीं अनसर्टेन रहा है इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का.
2: बिल्कुल अनसर्टेन रहा है, तभी ये मैच, ये जो टूर्नामेंट है, इस कंडीशन में आया है. आप देख रहे हैं 15-16 लोग खेल रहे हैं. नॉर्मली अगर आपकी एक कॉम्बिनेशन बना रहता है तो 11-12 लोगों में ही काम टूर्नामेंट पूरा चल जाता है. बहुत कम होता है कि आप 15-16 लोगों में खेलिए. बैटिंग में दिक्कत रही है इसमें भी, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप है ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रांग है. पर ये है कि अब उस स्ट्रॉन्ग को उसको एग्जीक्यूट करना है, और इससे आज से बड़ा ये मौका कभी मिल नहीं सकता. आज इनको पता डू और डाई है, आज नहीं करेंगे तो फिर आप पैकिंग करेंगे.
3: ख्याति, इन द गेम अगेंस्ट बांग्लादेश दो जमीमा गॉट सम रन्स, बट इन द 3 प्रायर गेम्स शी स्ट्रगल्ड. इज शी समबडी हु वांट्स दैट रोल क्लैरिटी, दैट पोजीशन क्लैरिटी?
4: डेफिनेटली अगर आप ऋचा घोष की बैटिंग देखेंगे तो उनको हमेशा थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. अगर आप उसको अप द ऑर्डर भेजेंगे, डेफिनेटली शी कैन शो यू गुड परफॉर्मेंस एंड शी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ गुड टोटल. बट उसका अगर आप बार बार डाउन चेंज करेंगे, इतने प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें भी आपको समझना चाहिए कि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. और जैसे ही उसको टाइम मिलता है, लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा, वनडे वर्ल्ड कप था, जैसे ही उसको टाइम मिला एंड शी गेव गुड कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द गुड टोटल. इतना तो आई थिंक अब सेम कोच है इतने साल से, तो सेम मैनेजमेंट है, इतना तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग अब तक हो जानी चाहिए अपने प्लेयर के लिए.
1: आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20 में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले श्रोता. बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, अपना परिचय दीजिए. और जी सौमित्र, यहीं से इनकी बात को आगे बढ़ाते हैं. 3 में से 1 कैच भारत ने ऑन एन एवरेज इस टूर्नामेंट में छोड़े हैं, जो बड़ा कंसर्न है कहीं ना कहीं फील्डिंग साइड के नजरिए से देखें. पूरे टूर्नामेंट में बहुत सारे कैचेस छूटे हैं, लेकिन टीम इंडिया को आज के मैच में बहुत ध्यान देना पड़ेगा.
0: बहुत जरूरी है, 4 मैचेस में 11 कैचेस. एक मैच बांग्लादेश के साथ पहला 5 ओवर में 4 कैच. मेरे हिसाब से सबसे क्रिटिकल कैच जो इसने छोड़ा वो है मैरिजॉन कैप का कैच. वो जो मैच 81, शी हैड 3 लाइव्स. कैन यू इमेजिन इन T20 जहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर इज वर्चुअली जीरो, वी हैव डन लाइक दिस टुडे. बट अगेन यू नो व्हेन जब हम रिपोर्टर्स लोग हमारे क्रिकेटर्स के साथ बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको पता है कि इसमें ऐसा होता है. क्रिकेट में जो क्रिकेट खेले हैं उनको भी पता है. आज तो सिर्फ नर्व्स को मैनेज नहीं करना पड़ेगा आपको, पूरा मैच में 40 ओवर्स में अपना How cool you are. She has used the word enjoyment. अगर आपने सुना होगा, enjoyment can only come if you're cool within and you have the composure to play such a big match. वो तो पहले ही पता चल जाएगा कि जब बैटिंग करेंगे हमने पावर प्ले में कैसा लिया. Don't forget that Australia are very very hungry and they have made one very important change that can be a deciding factor. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है.
3: और रविंदर, ये बस कैचेस ड्रॉप होने की बात नहीं है, फील्डिंग में भी फंबल्स देखने को मिले. इनफैक्ट बांग्लादेश के विरुद्ध इनिंग्स की आखिरी गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत खुद फील्डिंग के टाइम बॉल को ठीक से पकड़ नहीं पाई, तो वो जो जिटर्स हैं वो ऑलमोस्ट इन्फेक्शियस लग रहे हैं.
2: देखिए ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कैचेस का, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपकी क्या प्रिपरेशन है, आपके कोचेस क्या कर रहे हैं। एक राधा यादव जो कि इंजर्ड थी, उसके हाथ में इतनी मोटी बैंडेज थी, उसको आपने अंदर भेजा और तीन जो प्लेयर थे वो बाहर बैठे थे और उसके हाथ से कैचे छूट रही है, वो पकड़ नहीं पाई। फील्डर वो अच्छी है, उन पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय उनकी हालत, एक इंजर्ड

0: प्लेयर को आप अंदर लेके आ रहे हैं, और उस वो आप 20 ओवर के मैच में तीन तीन कैचेस छोड़ेंगे तो कैसे मैच जीत सकते हैं आप? कोई एक्सक्यूजेस नहीं है देखो फील्डिंग का, फील्डिंग पर अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं कोई लोकल मैच तो खेलने नहीं जा रहे, तो मुझे तो इसमें पूरा मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है कि आप लोगों ने क्या प्रिपरेशन करी उनके लिए।
1: फर्स्ट बॉल 20 के इस कार्यक्रम में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। जी विपिन जी,

0: इन्होंने 180 के टोटल की बात की। भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप में जब भी आमने सामने आए हैं, भारत का सर्वाधिक टोटल 167 रन रहा है, जो 2018 और 2023 में टीम इंडिया ने बनाया है। 167 से आज पार पाना चाहेंगे ख्याति?
1: डेफिनेटली, आई मीन वो तब बनाया था और उसके बाद से जो टीम ने इम्प्रूवमेंट की है, तो आई थिंक और एक्सपेक्टेशंस हाई होगी। और ये जो आज मुकाबला है, यहाँ से आपको ऑब्वियसली और आगे अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना होगा और सबकी कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। और आई एम श्योर उस बारे में बात बहुत ज़्यादा हुई होगी मैनेजमेंट में। एंड लास्ट वर्ल्ड कप में भी, ODI वर्ल्ड कप में भी इस बारे में डिस्कशंस चल रही थी कि किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करें। एंड बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, जो मुझे बाद में पता चला कि जिस तरीके से अमोल मजुमदार ने बात करी और मोटिवेट किया प्लेयर्स को, उनमें ट्रस्ट दिखाया, तो आई थिंक ये सेम सिचुएशन है, इस बारे में बात हुई होगी। एंड I think that they'll be succeeding in this.
2: Soumitro, ever more important to be imposing because of how deep Australia bat and how attacking they themselves are.
3: एक चीज श्रोता को बताना जरूरी है कि टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 बॉलर्स में एक भी ऑस्ट्रेलियन नहीं है, फिर भी ये अनबीटन है। How is that possible? It's a team game that they play. Regardless of the fact that in man-to-man, शायद experience wise Australians are much higher. Brett Mooney, Ellis Berry, Ash Gardner, fantastic. Aap dekhiye, but India has no shortage of experience. But experience comes for nothing if you don't score. Experience comes for nothing if you don't hold your catches. Experience comes for nothing if you don't take wickets. But the point is this, it's going to be a great contest. And as I said, that you know, it is all in the mind. Apne jo sawal kiya uske liye, India have to take ओवर बाई ओवर। ये नहीं कि रश करके हमने इतना सेट बनाना है। पावर प्ले, आई थिंक यू हैव सीन द फर्स्ट फ्यू मैचेस वेयर इंडिया स्कोर 10 एन ओवर, दैट विल बी आइडल स्टार्ट। बट डोंट फॉरगेट दैट ऑस्ट्रेलिया हैव अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप एंड दे नो एंड देयर फील्डिंग इज अमेजिंगली गुड। तो यू नो, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। आई मीन जस्ट अक्रॉस द अटलांटिक वी आर सीइंग अनदर वर्ल्ड कप। उसमें जिस तरह से केप वर्ड ये सब टीम्स खेल रहे हैं, इक्वाडोर जर्मनी को हरा रहे, Nobody can go in with a set plan. It is what you do at that moment and how you perform.
0: जी हाँ, थोड़ी बल्लेबाजी की बात करते हैं। रविंदर स्मृति मांदना भारत की तरफ से सबसे सफल बैटर हैं इस वर्ल्ड कप में, 4 मुकाबलों में 167 रन। लेकिन मैचअप की बात करें तो एश गार्डनर ने उन्हें 31 T20 मुकाबलों में 10 बार आउट किया है। कैसे देखते हैं इस मैचअप को?
4: देखिए, ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनका जो होमवर्क है वो बहुत तगड़ा है। वो हर प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, सबसे बड़ी बात। और बाकी ये बाकी एक दूसरे के साथ उनको पता है कि बैटर्स हैं। इंडियन की टीम जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, हरमनप्रीत है, शेफाली है और स्मृति है, इनके ऊपर उन्होंने जरूर होमवर्क किया होता। अब देखिए, पहले जितने भी T20 होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही उनकी विक्ट्री रही है। देखिए, डिपेंड करता है कि आपका स्कोर 160-160 वो नहीं होता, आप 160 में भी जीत सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप फील्डिंग करते हैं उस हिसाब से अगर आप 180 भी बना दें, 190 भी बना दें, तब भी आपको जीतना मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए। वो प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत ही प्लान तरीके से खेलने आते हैं उनके। देखिए, किसी भी वो बता रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि टॉप 10 में कोई भी नहीं है, लेकिन वो टीम वर्क है सारा। नीचे वाले भी जाके बैटिंग कर रहे हैं, 8-8 प्लेयर बॉलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये 160-170 रन तो बनाए, अगर बनाते भी हैं, लेकिन उसके बाद आपको पूरे फील्डिंग जो जज्बा दिखाना पड़ेगा, उसी का जीत पाएंगे। नहीं तो आप 180 रन करके भी जो फील्डिंग कर रहे हैं उसमें भी कोई फायदा नहीं होगा।
2: Now, Khyati, from one opener to the other, Shefali Verma hadn't scored a half century in T20 World Cups, though she'd featured in multiple of those since 2020. But this edition got two of those. Though Australia would like to exploit her weakness

0: तेज गेंदबाजों को लेकर बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं रविंदर।
1: देखिए बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास, अरुणिति रही भी रही है, रेणुका ने बॉल किया और क्रांति गौड़ हैं, लेकिन अब जैसे से अब भारत में अब क्रिकेट वुमेन्स के लिए बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। अब तो देखिए लोकल डिस्ट्रिक्ट में लीग्स चल रही हैं उनके लिए, और अब तीन चार पाँच साल में जिस हिसाब से इनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है जो BCCI द्वारा, उसमें आपको बहुत ही जल्दी आपको और भी अच्छे और टैलेंट देखने को मिलेगा। छोटी छोटी जगहों से काफ़ी निकल के आ रही हैं प्लेयर, में देख रहा हूँ लड़कियाँ भी काफ़ी निकल के आ रही हैं झारखंड से, बिहार वगैरह से, तो ये आपको जल्दी थोड़े दिनों में और भी अच्छा टैलेंट देखने को मिलेगा आपको।
2: One of the reasons probably for Indian pacers struggling is the conditions, and second, a lot of pace bowling all-rounders got injured ahead of the World Cup. Getting back to India's batting, Soumitro, Harmanpreet Kaur somehow hasn't looked in rhythm. There's no pattern to her dismissals, but she's been struggling to score runs fluently.
3: Absolutely, that you can see the lack of confidence can be seen in the way she has, the number of positions she has batted. If she was confident and she had the rhythm, then she would have perhaps batted in the top 4 or 5. Although, you know, she has enough batting power, but today is the day when she has to get her rhythm back. And against Australia, she's always scored the runs. She's always been the most valuable player. Unfortunately, all the 450s that she has scored in T20s have come against her. Whenever India have lost, shayad today is the day when the equation will change.
0: ख्याति, हमने बहुत बात की भारतीय टीम की, थोड़ी चर्चा ऑस्ट्रेलिया की भी कर लेते हैं, किस रणनीति के साथ वो इस मैच में उतरेंगे।
4: देखिए अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे उनका पेस अटैक काफ़ी अच्छा है, तो ये कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन स्मृति मंदाना एंड शेफाली वर्मा अलॉन्ग विद दीज आई मीन इन फ्रंट ऑफ दीज ऑस्ट्रेलियन बोलर्स और एशले गार्डनर एंड हरमन के उसमें। तो आई थिंक डेफिनेटली ये कॉन्टेस्ट कौन बॉल टू बॉल जीतता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सर ऑल्सो सेड कि ये पूरा 40 ओवर्स लास्ट बॉल तक आप इस गेम को किस तरीके से खेलते हैं वो उस पर बहुत निर्भर करता है।
2: और वही एलिस पेरी भी रन बनाए पाकिस्तान के विरुद्ध, पहला T20 विश्व कप का अर्धशतक जड़ा, 2 विकेट भी निकाले, तो उस मोमेंटम के साथ और भी आगे बुनाना चाहेंगे।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऑस्ट्रेलिया अनबीटन साइड है देखिए अभी तक, उनमें अभी ज्यादा कुछ कमियां दिख नहीं रही क्योंकि अभी तक हारी नहीं टीम। जब टीम हारती है तभी आपकी कमियां निकल के आती हैं, जीत जाने पे सारी कमियां छुप जाती हैं। अगर उस दिन भी अफ्रीका के अंदर मैच जीत जाते लास्ट में तो सारी राधा यादव को कोई याद भी नहीं कर रहा होता। आज भी इनको इसलिए याद करा जा रहा है कि उनकी मैच हार गई, तो ये डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है उनका। यही अब ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो एपिक जो राइवलरी है वो आज देखने को मिल रही है, डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड

0: किया, आप जो पहले बैटिंग करने जा रहे हैं आपने डिसीजन लिया, अच्छा लिया डिसीजन, पॉजिटिव डिसीजन है, क्योंकि इतने बड़े प्रेशर मैच में आपको पहले अगर आप रन बना देते हैं तो बढ़िया है। अगर ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग करते 180 नंबर रन बनाते तो चेस करने में बहुत प्रेशर होता, लेकिन बढ़िया आप 6 ओवर पहले संभल के लिए 40 रन का टारगेट रखिए, विकेट मत दीजिए आप, और उसके बाद धीरे धीरे इसको टीम अपना बिल्डअप करेंगे तो आप 20 ओवर में 180 के आसपास पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपने लूज की विकेट शुरू में पावर प्ले में, तब वापस आपको दिक्कत आ जाएगी।
1: सौमित्रो, हमने कई खिलाड़ियों की चर्चा की, लेकिन अगर आज भारत को बड़ा टोटल बनाना है तो ऋचा घोष को बहुत बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी लोअर मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि तीन ऐसे इस टीम में प्लेयर हैं जिनके पास बल्लेबाजी का अनुभव नहीं है, और T20 में टेल अगर की बात करें तो भारतीय टेल थोड़ी लंबी नजर आती है।
2: देखिए, ऋचा घोष का नाम आपने जिक्र किया, बैटिंग कहाँ करेंगे, 4 नंबर में किया, 7 नंबर में किया, 6 नंबर में किया, आज कहाँ करेंगे, वही तो सवाल मैंने पहले भी पूछा है कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। एंड डोंट फॉरगेट देयर समबडी कॉल्ड दीप्ति शर्मा, शी इज लाइक द रविंद्र जडेजा ऑफ इंडियन टीम, कहीं पे भी बैट कर सकते, कभी भी विकेट ले सकते, मोस्ट बिजीएस्ट क्रिकेटर इन द इंडियन क्रिकेट टीम। तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कि यू कैन गो विद अ सेट प्लान, कोच साहब ने कहा ही है यू कैन गो विद अ सेट प्लान, यू कैन नेवर गो विद अ सेट प्लान, बट यू वुड एक्सपेक्ट दैट योर मेन प्लेयर्स विल स्कोर द रन्स, right? So what is a good score? Nobody knows. 160 perhaps. So there are a lot of questions, and that's the beauty of these contests like between India and Australia. You don't know. There are so many factors that you cannot control. What you can control is what you can do. Like, you know, he said maybe 40 runs in the 10 overs. Hold your wickets. Okay, so fascinating. I mean, that's why India, Australia, England, Australia, these are big matches. And big matches, you can't go with the plan. You play on the day, face the circumstances, play the conditions, and go on.
3: Talking about questions, at the start of the year, Sophie Molino was anointed the captain. There were question marks around her fitness, whether she'd be able to lead Australia during the World Cup. Not only has she shown herself to be fit enough, she's also delivered consistently 6 wickets in 4 games. Kyati.
4: Yeah, definitely. I mean, if you see that, like Litchfield also, they want to play against India because they have that hunger, and they still remember the ODI World Cup, and they were waiting for this game, and they will give their best for this game, and they are coming up with the best team, and I'm sure that she will deliver.
1: शेफाली वर्मा पर दबाव होगा, रविंदर चूंकि तेज तर्रार शुरुआत के लिए वो जानी जाती हैं, अच्छी फॉर्म भी दिखाई है, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने पारियां खेली हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम, बड़ा मुकाबला।
0: देखिए, शेफाली एक बहुत बड़ी प्लेयर है, इंपैक्ट प्लेयर है, वो जिस हिसाब से बैटिंग करती है, जैसे वीरेंद्र सहवाग वगैरह बैटिंग करते थे, अगर वो 6 ओवर में उनको वो रहती हैं, स्टार्ट देती हैं, तो उसके बाद अगर वो विकेट पे रहती हैं तो ये मैच इंडिया बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उनके जो पॉजिटिव अप्रोच है, उनकी जो बाउंड्रीज निकालना है, वो और इवन किसी भी प्लेयर के लिए आसानी से शेफाली निकाल पाती हैं। शेफाली उनकी बल्कि ऑस्ट्रेलियंस की वेटलिस्ट में होंगी कि उनको पहले आउट करना चाहेंगे शेफाली को जरूर, वो तो उनको पता है शेफाली बहुत अग्रेसिव प्लेयर हैं, उनको जितना लंबा खड़ी रहेंगी उतना इंडिया के लिए बेटर रहेगा।
1: जी हाँ, बिल्कुल, शेफाली से उम्मीदें होंगी। लॉर्ड्स की इस ऐतिहासिक पिच पर एक मजबूत स्कोर सिर्फ स्कोर बोर्ड पर अंक नहीं जोड़ता, बल्कि विपक्षी टीम के मन में भी सवाल खड़े कर देता है। अब निगाहें होंगी भारतीय टॉप ऑर्डर की ठोस शुरुआत पर, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी पर, और अंत के ओवर में तेज गति से रन बटोरने की क्षमता पर। फर्स्ट बॉल 20 में इतना ही। रविंदर जी आपका, ख्याति गुलानी आपका, और सौमित्र बोस आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया,
0: थैंक यू।
5: फर्स्ट बॉल 20।
6: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
7: भारत के लिए ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का ये मुकाबला भारत को जीतना होगा अगर भारत सेमीफाइनल में अपना दाखिला चाहता है। इससे पहले कि ये मुकाबला शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि आज की टीमें किस तरह से हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम खेल रही है उसमें खिलाड़ी हैं बैट मूनी, जॉर्जिया वॉल, एलिस पेरी, एशली गार्डनर, जॉर्जिया वेरफिन, एनिबल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोनिलू, लूसी हैमिल्टन, किम गार्ड और फीबी लिचफील्ड।

0: भारत की तरफ से जो टीम खेली जा रही है उनमें शामिल हैं स्मृति, शफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, हरमनप्रीत, जमीमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्रीचरनी, रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौड़ को आज के इस मुकाबले में शामिल किया गया है। जिन्होंने अपने रेडियो सेट्स अभी अभी ट्यून किए हैं उनकी जानकारी के लिए हमें ये बता दूं कि भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और पिच को अगर देखा जाए तो पिच पर घास है जो ये बताती है कि गेंद में गति और उछाल देखने को मिलेगी और घास सूखी है जो ये बताती है कि बल्ले के ऊपर गेंद अच्छे से आएगा और रन ज़्यादा यहाँ पर बनने की संभावना। और मेरे साथ हैं अश्विन। नमस्कार अश्विन।
1: Thank you, Bhupinder ji. It was as you mentioned, it is a very important match from India's perspective. This is slated to be a kind of a quarter-final match where India, it's a do-or-die game for India. They need to win this match if they have to progress from here to play in the further in the journey of the World Cup. So this is being a very critical match for India, and as you mentioned, there's only one change for India, where Kranti Gaur comes in place of Nandini Sharma, and that's a good move because this match is going to happen at Lords, which will prefer the pace and the variable bounce, which is very important. So I feel that's a great change for Indian team that has happened in this match. And so we are all looking in very exciting times for Indian cricket, and they are all set to prove and play the kind of cricket that Indian fans are looking for, Bhupinder ji.
0: और आरंभक बल्लेबाज के रूप में शफाली वर्मा और स्मृति इस समय क्रीज पर हैं और मुकाबला शुरू होने को है। शफाली वर्मा जो कि इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी फॉर्म में है, नीदरलैंड्स के विरुद्ध शानदार 55 रन की पारी उन्होंने खेली थी, विकेटों के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए थे, 38 गेंदों में ये 55 रन उन्होंने बनाए थे और साउथ अफ्रीका के विरुद्ध भी 31 रन की शानदार पारी थी और बांग्लादेश के विरुद्ध भी अर्धशतक बनाया था। स्मृति मानधना इस समय स्ट्राइक पर और लूसी हैमिल्टन की ये पहली गेंद, बाएं हाथ की तेज गति की गेंदबाज लूसी हैमिल्टन जिन्होंने स्टंप्स के बीचों बीच गुड लेंथ पर ये गेंद डाली थी जिसे सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की तरफ खेला था स्मृति मानधना ने। लूसी हैमिल्टन एक बार फिर से ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया मगर सीधा मिड ऑफ पर खड़ी फील्डर के पास, रन बनने की कोई संभावना नहीं। आरंभक जो बल्लेबाज हैं भारत के वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पारी में अगर मजबूती बनानी है तो आरंभक जोड़ी से साझेदारी दरकार होगी भारतीय टीम को और इस बात को बखूबी जानती हैं ये दोनों बल्लेबाज शफाली वर्मा और स्मृति। स्मृति सामना करने के लिए तैयार। इस बार ये गेंद लेग स्टंप के बाहर फ्लिक कर दिया गया डीप फाइन लेग क्षेत्र पर, रन भागने का मौका स्मृति के पास जब तक गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो किया जाए, एक रन भागने का मौका, भारत का खाता खोला, स्मृति एक भारत एक बिना किसी विकेट पर। लूसी हैमिल्टन जिनकी गेंदों में थोड़ा उछाल थोड़ी मूवमेंट देखने को मिली है, इन तीनों गेंदों में उन्होंने इन स्विंग डाली है स्मृति मानधना को और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इन गेंदों को खेला है स्मृति ने, जो ये बताता है कि पूरी तरह से आत्मविश्वास में फॉर्म में अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत रहेगी भारत को यहां पर। तीन गेंदों में एक रन। लूसी हैमिल्टन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करते हैं, शफाली वर्मा अब सामना करेंगी। ओवर द विकेट लूसी हैमिल्टन की ये गेंद, ओवर पिच कवर ड्राइव किया मगर स्ट्रोक में ज्यादा जान नहीं, सीधी फील्डर के हाथ में गेंद जिसकी वजह से रन बनने की कोई संभावना नहीं। शफाली वर्मा ने ये पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच लेते हुए खेली। शफाली वर्मा का बल्ला बुलंद है इस वर्ल्ड कप में, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, स्पिन गेंदबाजी के विरुद्ध काफ़ी आत्मविश्वास से खेले हैं वो, विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेले हैं और इस वर्ल्ड कप में उनकी बल्लेबाजी में ये देखा गया कि ज़्यादा क्रॉस बैट से नहीं खेल रही हैं, विशेष तौर पर स्पिन गेंदबाजी के सामने वी शेप में स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया है। लूसी की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे कट किया बैकफुट पॉइंट क्षेत्र पर, जब तक अपनी बाई तरफ भाग कर गेंद को फील्ड करेंगी डीप बैकवर्ड पॉइंट से फील्डर, एक रन भागने का मौका शफाली वर्मा के पास। पांच गेंदों में दो रन भारत के इस पहले ओवर में। लॉर्ड्स के इस खूबसूरत मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मुकाबला, विकेट अब तक बिल्कुल सटीक सपाट, बल्ले पर अच्छी तरह से गेंद आती हुई। लूसी की अगली गेंद

0: इस ओवर की आखिरी सीधी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करना चाहती थी, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र पर गई। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए भागकर एक रन पूरा किया। एक रन के साथ भारत का स्कोर 3 इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।

0: करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: लॉर्ड्स के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। आईसीसी टी20 मुकाबलों की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 53 मैचेस खेले हैं, 43 जीते हैं, 9 हारे हैं और एक मैच टाई रहा है। इस बीच लूसी हैमिल्टन अपने नए ओवर की शुरुआत करती हुई पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे ड्राइव स्केयर ड्राइव किया शेफाली वर्मा ने, डीप कवर से जब तक गेंद को फील्ड किया जाए भागकर एक रन पूरा किया। भारत का स्कोर 2.1 ओवर के बाद 12 बिना किसी विकेट पर। और आईसीसी महिला विश्व कप टी20 मुकाबलों में अगर भारत की भागीदारी की अगर बात की जाए तो भारत ने अब तक 44 मैचेस खेले हैं, 25 जीते हैं, 19 हारे हैं। धन्यवाद जतिन सूद इस जानकारी के लिए। इस बीच लूसी हैमिल्टन की ये गेंद गुड लेंथ स्टंप के बीचों बीच, और स्मृति ने ये देखा कि हैमिल्टन की गेंदों में ज़्यादा गति नहीं है तो इस बार वो कदमों का इस्तेमाल करके इस गेंद को ड्राइव करना चाहती थी, मगर गेंद से दूर रही जिसकी वजह से हल्का सा धकेला उसे मिडॉन की तरफ, जहां पर फील्डर मौजूद, रन बनने की कोई संभावना नहीं। पिछले ओवर में स्मृति ने अश्विन जो दो स्ट्रोक्स खेले बैकफुट पर जाकर, जिस तरह से ऑन ड्राइव लगाए उन्होंने, क्या टाइमिंग थी उनकी, बड़ी खूबसूरत टाइमिंग के साथ वो स्ट्रोक्स खेले थे। इस बीच एंसरिंग गेंद अंदर की तरफ आती हुई मिडल और लेग स्टंप पर, जिसे सीधे बल्ले से मिडॉन क्षेत्र पर खेला गया बगैर किसी रन के, और कमाल की टाइमिंग से खेल रही हैं। और दोनों बल्लेबाजों की जो अप्रोच है उससे लग रहा है कि उनको मालूम है कि उन्हें लंबा खेलना है, साझेदारी बनानी है और एक अच्छा लक्ष्य देना है ऑस्ट्रेलिया को। 12 भारत बिना किसी विकेट पर 2.3 ओवर के बाद। लूसी हैमिल्टन प्रभावशाली गेंदबाजी करती हूं। इस बीच शॉट ऑफ लेंथ, गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया मिड विकेट क्षेत्र पर, फील्डर भाग रही है गेंद के पीछे, डाइव किया मगर रोक नहीं पाई, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: स्मृति को मौका मिला और इस मौके को पूरी तरह से भुनाया उन्होंने। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस गेंद को पुल किया उस क्षेत्र में जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था। स्क्वायर लेग पर खड़ी फील्डर ने हालांकि कोशिश की गेंद को रोकने के लिए मगर सफल नहीं हो पाए। एक चौका स्मृति और भारत के खाते में। 16 भारत बिना किसी विकेट पर 2.4 ओवर के बाद। इस ओवर में 5 रन आ चुके हैं, 2 गेंदे बाकी। स्मृति सामने है लूसी हैमिल्टन के। गुड लेंथ गेंद जिसमें ज्यादा गति नहीं थी, थोड़ा सा लहराव अंदर की तरफ आती हुई, सीधे बल्ले से इसे सुरक्षात्मक तरीके से खेला गया। किसी तरह का जोखिम नहीं ले रहे हैं अश्विन दोनों बल्लेबाज, वो जानते हैं कि विकेट को सुरक्षित रखना काफी जरूरी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी की जा रही है। अभी तक कोई भी हवाई स्ट्रोक दोनों बल्लेबाजों की तरफ से देखने को नहीं मिला है। इस ओवर की आखिरी गेंद, भारत को यह मुकाबला जीतना ही होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका अपना मुकाबला जीत चुका है। लूसी की यह गेंद गुड लेंथ गेंद, ड्राइव करना चाहती थी, बीट हुई, भाग्यशाली रही कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 16 बिना किसी विकेट पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
7: So that was a great start from India. Another boundary coming in from Smriti's bat in this over. So 3 boundaries for her in her brief score of 14 runs of 15 deliveries. Shefali Verma hasn't gotten much opportunity as of now. She's just faced 3 deliveries, scored a single. But now this over, she's going to be on strike after Smriti Mandhana was beaten on the last ball of Lucy Hamilton. Matchups we need to see. I was waiting for Ashley Gardner to come, and this time Shefali Verma goes over the bowler's head on the long off region for a beautiful, beautiful boundary. What a boundary this was from Shefali's bat.
2: ये लगा आभा का चौका।
7: We were waiting for this. Shefali was itching one to join Smriti Mandhana. She has scored 3 boundaries, and you can see that there's a kind of competition, Birenderji, in between them this time again. Ashley Gardner, again the tossed up delivery, but played very carefully along the ground. The ball, by the time rolls down to long on region, batsmen, both the batters have enough time to cross for a single, and

0: That moves the team score to 21 without loss with four boundaries in this. So that's a cautious start, and all boundaries are coming along the ground. So that was a great sign for Indian team that they are not going to go anything in the air unless that ball demands or invites them to come and launch it over the boundary. So 3.2 overs, 21 without loss. Smriti on 14 or 15 delivery. Shefali on 7. This time Smriti Mandana again cautious. Went on the back foot. There was a good length ball, went back and drives it down to the mid-off region. So no damage done, 3.3 overs gone, 21 without loss, four boundaries of Indian. And Ashley Gardner's, if you look at matchup, she has actually taken Smriti Mandana for cleaners. She has actually taken 10 dismissals against her. So there was a good matchup for Ashley Gardner and Smriti, and that makes Smriti more conscious. This time she drives, dances down the wicket, plays on foot, full toss, and enough time to cross for a single. So Shefali on strike, 22 without loss, 3.4 overs gone. This time Shefali again on the rise, picks it up and over the boundary for a sixer.
1: Ye laga aabha ka chakka.
0: This was outside the off stump, loose delivery, and Shefali is not going to give away anything on that. And she actually targets the loose delivery, and she was on to the target, launches it over the long off boundary for six. So 1-6 and 1-4 off Ashley Gardner. She is one of the most successful bowler of Australia, and they were actually trying, but Shefali Verma comes on top of the ball and launches it over for a six. That moves Indian score to 28 with 1-6 and four boundaries, and 3.5 over. Was 28 without loss, again in the air, but lands safely on the left hand side of Ashley Gardner, and that brings to end of Ashley Gardner's over. She has given 13 runs in that over, and India score 29 without loss at the end of four.
2: Kamal ki ballebazi rahi hai is over mein Shefali Verma ki. Ashwin, jis tarah se flighted gendon par उठाकर ऊंचे स्ट्रोक्स खेले हैं शेफाली वर्मा ने, पहला मिड ऑफ के ऊपर से चार रन के लिए, और दूसरा तो कमाल का स्ट्रोक था कवर्स के ऊपर से छह रन के लिए. और इस वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा ने स्पिन गेंदबाजी पर जिस तरह से आक्रमण किया है वो दर्शनीय है. बांग्लादेश के विरुद्ध भी जो 53 रन की पारी उन्होंने खेली थी 24 गेंदों में, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था, उसमें भी हमने देखा कि स्पिन गेंदबाजी को वी में उन्होंने स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास किया है. पावर प्ले में जबकि घेरे में ज्यादातर फील्डर्स हैं, घेरे के बाहर सिर्फ दो फील्डर्स हैं, और मिड ऑफ के ऊपर से जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं वो दर्शनीय है, काबिले तारीफ है, और बिल्कुल सही है इस मुकाबले में भारत के लिए जिस तरह से एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है भारत को. तो भारत का स्कोर 29 चार ओवर्स की समाप्ति के बाद. शेफाली वर्मा इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 14 रन पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद, और स्मृति हैं 15 पर 17 गेंदों का सामना करने के बाद. नए ओवर की शुरुआत पैरी करती हुई, गेंदबाजी में परिवर्तन, लूसी हैमिल्टन की जगह पर पैरी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. रनों की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती हुई, आत्मविश्वास में आते हुए ये दोनों बल्लेबाज, और प्रहार करते हुए, आक्रमण करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के ऊपर, और ये जरूरी है और एक साझेदारी की जरूरत है भारत को. 4.1 ओवर के बाद भारत 29 बिना किसी विकेट पर. शेफाली वर्मा है सामने पैरी के, ओवर द विकेट, लंबी ऊंची कद की पैरी, मिडल और लेग स्टंप के बाहर ये गेंद फ्लिक करना चाहती थी, बीट हुई, मगर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से. भारत का स्कोर हुआ 30 बिना किसी विकेट पर. अच्छी क्रिकेट यहां पर लॉर्ड्स के इस मैदान में. भारत के लिए ये महत्वपूर्ण मुकाबला, इस मुकाबले को जीतना ही होगा, और जीत के लिए चाहिए एक अच्छा लक्ष्य जो कि ऑस्ट्रेलिया को देना होगा, ताकि ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाया जा सके, और इसके लिए जरूरी है साझेदारी का होना और गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण का करना. गुड लेंथ गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर स्टीयर करना चाहती थी, बीट हुई, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी करती हुई पहली, 114.9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये फेंकी हुई गेंद, हालांकि हवा में ज्यादा स्विंग नहीं और टिप्पा खाने के बाद भी गेंद सीधी रही, मगर स्टीयर करने के प्रयास में बीट हुई थी शेफाली वर्मा, जो कि इस समय 9 गेंदों का सामना करने के बाद 14 पर बल्लेबाजी कर रही है. 30 भारत का स्कोर 4.2 ओवर के बाद. पैरी की यह गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, लेग स्टंप पर, बैकफुट पर जाकर इसे फ्लिक किया, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद है वहां पर. जब तक गार्डनर थ्रो करेंगी, बैथमुनी के दस्तानों में एक रन भागने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास. 15-15 दोनों का स्कोर, स्मृति और शेफाली का अच्छी बल्लेबाजी करती हुई. 4.3 ओवर के बाद भारत 31 बिना किसी विकेट पर.

0: स्मृति सामना करेंगी पैरी का। इस ओवर में अब तक दो रन आए हैं, एक बल्ले से और एक वाइट बॉल की मदद से। बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति अच्छी टाइमिंग से आज बल्लेबाजी कर रही हैं। दो खूबसूरत बैकफुट पर ऑन ड्राइव खेले हैं उन्होंने। अराउंड द विकेट स्मृति के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल करना चाहती थी, पैड से टकराई। हालांकि हल्की सी LBW की अपील भी की गई, मगर खुद गेंदबाज ये जानती थी कि ये गेंद
1: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश।

0: दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृशक्ति कॉन्क्लेव में कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ सुना। श्री पाठक ने प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किए गए सकारात्मक कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विभिन्न गांवों में, शहरों में नवाचार है, अलग अलग ढंग से लोग काम कर रहे हैं, विशेष रूप से चर्चा जिसमें जो वैश्विक संकट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, हम लोग कार पूल करके चले। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया एक वैवाहिक समारोह में किस ढंग से अतिथियों को उपहार के रूप में सामूहिक दुर्घटना बीमा का लाभ हर अतिथि को दिया गया। ये ऐसे आयोजन है, ऐसे कार्यक्रम है जिससे आदमी अपने आप को जुड़ा

0: महसूस करता है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस जनपद में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या त्रेता युग की

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। दिसंबर 1947 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई ये जंग देश के इतिहास में एक ऐसी जंग थी जिस पर हौसलों से फतेह पाई गई। पहली सिख रेजिमेंट के शेर दिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के सफल संचालन से भारतीय सेना को इस मोर्चे पर फतेह हासिल हुई और दुश्मनों को शिकस्त। कबायलियों और दुश्मन सेना को इस कदर पीछे धकेल दिया गया कि इस जंग से आज भी शत्रु खौफ खाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिन भारत माता के सपूतों के ऐसे हौसले हों उन्हें भला दुश्मन कब मार सकता है।

फौजी साथियों, भारत से अलग हुए पड़ोसी देश के साथ सन 1947 में लड़ी गई इस जंग में पहले सिख रेजिमेंट के होनहार और बहादुर सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को सेना के सफल संचालन, उनकी सूझबूझ, कर्तव्य निष्ठा और असाधारण पराक्रम, उनके बलिदान, वीरता, अदम्य साहस के लिए इस जंग में शत्रुओं को नेस्त नाबूद करने और फतेह का तिरंगा लहराने के लिए भारत सरकार ने सूबेदार बिशन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। हम सूबेदार बिशन सिंह को सलाम करते हैं।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार। आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज और अजनबी।

0: अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। गीत कंवर जलालाबादी का था, संगीत ओपी नैयर का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए अजनबी फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज़ कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों हवामहल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजेश भदौरिया की लिखी झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। निर्देशक हैं गुरुमीत रामलमीत।

0: अरे लड़ी नजरिया लड़ी।
1: आज तो बड़े बाबू भाई, वाह क्या कहने। अरे किसका कत्ल करके चले आ रहे हैं,
2: देखो चौबे, औकात में रहो।
1: क्या बात है। आज आपके होठों पर आशिकी नगमा,
2: गुनगुना क्या दिया, लग गया सबको चरपरा। और जब पिद्दी से लौंडे आजकल तरह तरह के गाने गाते फिरते हैं, तो हमने जरा सा गुनगुना दिया, इसमें कौन सा धधकता हुआ ज्वालामुखी ब्लास्ट हो गया।
1: आप तो खामखा आग बबूला हो गए बड़े बाबू।
2: और नहीं तो क्या, गुलगुला हो जाऊं।
1: देखिए बड़े बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि आप राशन पानी लेकर ऊपर चढ़ बैठे।
2: और कैसे कहा जाता है, जो कहना था वो सब तो कह दिया, बहुत है इज्जतदार के लिए इतना।
1: भाई क्या कह दिया, जरा मैं भी तो सुनूं।
2: आशिकी नगमा, कत्ल करके आए हो। अरे मैं कहता हूं, और क्या कह सकते हो।
1: भाई बड़े बाबू, रोज आपके मुंह में पान और होठों पर महंगाई का रोना, या तो फिर दूसरों को कोसना, या इसकी शिकायत उसकी शिकायत, लेकिन आज वाह वाह क्या बात है, किसकी तरफ से आने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे।
2: लो एक और आ गए। चाहे सवेरे घर में चाय तक ना नसीब हुई हो, लेकिन कार्यालय में बात करेंगे तो गर्मा गर्म समोसे से नीचे नहीं, जैसे नवाबजादे समोसे खाते खाते ही पैदा हुए थे।
1: हाँ ये बात तो है। नहीं खजूरी साहब, ये बात नहीं, आज तो बड़े बाबू।
3: अच्छा, आज तो बड़े बाबू की तरफ से है। बधाई हो बड़े बाबू, बधाई हो।
2: अरे कौन सी ढोलक बजी है हमारे घर में, किस बात की बधाई।
3: बात बाद में, पहले तो हो जाए। हाँ
2: हो जाए हाँ, यहाँ मुफ्त में बंट रही है, जब जी चाहे हो जाए हाँ।
1: खजूरी, बात दरअसल ये है कि आज बड़े बाबू पर किसी हसीना का चक्कर चल गया है।
3: चक्कर, हसीना का चक्कर, तो ये बात है। अमा भाई, आप तो छिपे रुस्तम निकले, आखिर खिजाब ने कमाल दिखा ही दिया।
2: ओफो,
3: इसीलिए मैं सोच रहा था कि इंटीमेट कहाँ महक रहा है।
2: अरे अरे, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इंटीमेट किस भकुए ने लगाया है, यहाँ तो मिट्टी के तेल की खुशबू के अलावा दूसरी कोई सुगंध ही नहीं पहचानते।
1: मजाक छोड़िए बड़े बाबू, बता भी दीजिए कब बज रही है ढोलक।
2: अरे खजूरी, तुम ही बताओ, जब कोई बात हो तभी तो बताए, है कि नहीं भला।
3: थोड़ा सा बड़े बाबू लंच करवाना पड़ेगा। हाँ
2: देखो देखो, दूर से बात करो। हाँ दूर से बात करो, मुझे गुदगुदी बहुत लगती है। हाँ गुदगुदी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए।
3: अरे हम किसी से कहने थोड़े ही जा रहे हैं, आपकी कसम हम ही तो आपके चाहने वाले हैं।
2: क्यों नहीं क्यों नहीं, आपकी चाहत की वजह से ही तो ये हो रहा है।
1: छोड़ो यार खजूरी, नहीं बताना चाहते हैं बड़े बाबू तो न बताएं, जब पेट में दर्द होगा तो खुद ही कहेंगे। सुन लो आकर मेरी बात, देख लेना हम भी नहीं सुनेंगे तब।
2: हाँ, जब
3: हाँ
2: दर्द होगा तब देखेंगे।
3: अच्छा चोबे, ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला चक्कर का।
1: आज सवेरे सवेरे बड़े बाबू गाना गा रहे थे, लड़ी नजरिया लड़ी।
3: अच्छा तो ये बात है, बता दीजिए बड़े बाबू, भगवान कसम अब नहीं रहा जाता।
2: अब तुम ही सोचो खजूरी, हमें तुमसे कोई पर्दा है क्या।
3: नहीं तो।
2: और फिर पर्दा ही करना होता तो मैडम सरिता से करते।
3: हाँ, और क्या,
2: मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा।

0: अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें ना बताता।
1: लेकिन लड़ी नजरिया लड़ी वाली खबर।
0: अरे ये सब चोंचले हैं चौबे के, मैंने तो बस यूं ही गुनगुना दिया था जरा।
1: जब आप गाना गा रहे थे।
0: गा नहीं, गुनगुना रहे थे।
1: हाँ वही, जब आप गुनगुना रहे थे तो आपके दिल में कुछ ऐसा कुछ वैसा, मेरा मतलब कुछ कुछ
0: कुछ नहीं हो रहा था खजूरी, मैं सच कहता हूँ कुछ नहीं हो रहा था।
1: सोच लीजिए बड़े बाबू, ऐसे वैसे गाने कोई यूं ही नहीं गाता, जब भीतर कुछ कुछ होता है तभी ऐसे गाने मुंह पर आते हैं।
0: ओफो, गाना ना हुआ पानी हो गया, जो जब मन हुआ मुंह में आ गया। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे अंदर।
1: तो फिर आपने देशभक्ति का गीत क्यों नहीं गाया, जबकि जरूरत है आजकल देशभक्ति के गानों की।
0: ओफो,
1: देखिए देखिए परेशान मत होइए, चोबे गया है बाहर, तब तक मुझे बता डालिए।
0: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
1: मान लिया, लेकिन अपना भी ये दावा है कि देखकर जान लेते हैं भीतर का हाल, उठ रहा है कहां कितना उबाल।
2: मारे गए बेमौत, अब साहब क्यों बुला रहे हैं, इसी वक्त बुलाना था इनको भी।
1: कहीं साहब तक तो बात नहीं पहुंच गई, संभल कर बड़े बाबू।
2: आपने मुझे बुलाया साहब?
3: हाँ बुलाया है, बैठो बैठो, डोंट वरी, तुम्हारे जैसे मेहनती और चरित्रवान आदमी पर ऑफिस को गर्व है।
2: धन्यवाद साहब।
3: इधर तुम्हारा काम धंधा, मेरा मतलब ऑफिस का काम कैसा चल रहा है?
2: ठीक ही चल रहा है आपकी मेहरबानी से।
3: तुम्हारी उम्र कितनी है बड़े बाबू?
2: साहब मैं समझा नहीं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
3: यू ही फॉर जनरल नॉलेज।
2: साहब बस ये समझ लीजिए, पुराना खाया पिया है, इसलिए अब की फागुन में 48 वर्ष।
3: आपके बच्चे भी काफी बड़े बड़े होंगे।
2: जी आपकी मेहरबानी से।
3: इस उम्र में आपके इश्क के चर्चे बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है।
2: जी मैं कुछ समझा नहीं।
3: देखो बड़े बाबू, आज ऑफिस में सवेरे से आपके इश्क की चर्चा है, जिधर देखिए उधर बस एक ही खबर, माजरा क्या है जरा मुझे भी तो बताइए।
2: साहब ये आप क्या कह रहे हैं, भला सोचिए मैं इश्क कैसे कर सकता हूँ। आज तक साहब मैंने किसी लड़की की तरफ तो क्या, बीवी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा है।
3: होता है, अक्सर ऐसा होता है, लोग नहीं देखते हैं आंख उठाकर, लेकिन इंसान का काबू अपने जज्बात पर नहीं होता, कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं होती। डोंट वरी, बताओ भी।
2: अब तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। अब साहब आपसे क्या छिपाना, यूं ही पता नहीं क्यों मन में आज पुरानी यादें किलोले करने लगी।
3: फिर क्या हुआ?
2: फिर मन में उमंगे
3: पतंगे,
2: नहीं साहब उमंगे उठने लगी, गिरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी।
3: फिर
2: कुछ नहीं साहब।
3: ओहो नॉनसेंस, वेयर इज क्लाइमेक्स, आगे क्या हुआ?
2: साहब फिर मुझे लगा मेरी रगों में सपरेटा नहीं प्योर खून बह रहा है, मुझे भी अपने सांसों में बदबू नहीं खुशबू महसूस होने लगी।
3: क्या हुआ बड़े बाबू, फिर क्या हुआ? ठीक से बैठिए ना।
2: हाँ ठीक है।
3: नहीं पैर कुर्सी के नीचे।
2: सॉरी सर, बाबू हूं ना, इसी से आदत है।
3: कैरी ऑन।
2: फिर मुझे ऐसा लगा मैं आकाश में किसी
3: ओहो बताइए ना,
2: किसी परी के साथ उड़ रहा हूं, सारी दुनिया से बेखबर उससे बातें कर रहा हूं।
3: क्या बातें कर रहे हो?
2: मैं उसे कल की सब्जी के भाव बता रहा था, परमल 8 रुपए किलो, कद्दू 4 रुपए, लौकी।
3: ओहो आप भी किस मौके पर कहां की बात ले बैठे, कहां गया है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड?
2: साहब अब की वो मुझे मिल गई तो मैं उससे कहूंगा प्रिये हम तुम इसी अवस्था में सदियों तक विचरण करते रहे।
3: बड़े बाबू मेरा हाथ छोड़िए।
2: ओह सॉरी सर।
3: और वो गाना?
2: साहब वही गाना मैं गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था, लड़ी नजरिया लड़ी नजरिया।

0: लड़ी।
1: अरे उठो भी, क्या सोते में लड़ी नजरिया लड़ी गाते जा रहे हो। चार लौंडों के बाप हो गए, नजरियों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे मैं कहती हूँ, दुनिया में लड़ाइयों के खत्म होने के ऐलान हो रहे हैं। एक आप हैं, नजरियों की लड़ाई लड़े जा रहे हैं।
0: बात यह है मुन्ने की अम्मा, मैं सोते में एक बहुत प्यारा चटपटा सपना देख रहा था।
1: सोते में सपने तो देखोगे ही, जागते में तो मैं भूतनी बनी खड़ी रहती हूँ तुम्हारे आगे। जरा मैं भी तो सुनू, किससे नजरिया लड़ा रहे थे?
0: तुम तो जानती ही हो, मैं भला किससे नजरिया लड़ा सकता हूं।
1: हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे चौंचले। तो
0: मेरा विश्वास करो भाग्यवान, मैंने किसी से नजरें नहीं लड़ाई।
1: फिर लड़ी नजरिया लड़ी?
0: वो तो सपने में जवानी की पुरानी यादें तरोताजा करने के लिए, कसम से।

लड़ी नजरिया लड़ी। अभी आप सुन रहे थे राजेश भदौरिया की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गुरुमीत रामल मीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म हेट स्टोरी 4 से। इसे गाया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने। गीत मनोज मुंतशिर और संजय गुप्ता का है, संगीत आरको का।

अगला गाना फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से है। इसे गाया है पलक मुछाल ने, गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा, संगीत अमाल मलिक का।

आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में दिलवाले फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, संगीत प्रीतम का है।

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बागी 2 फिल्म का गाना। अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाज़ों में, गीत कुमार का है, संगीत गौरव रोशन का।

आइए अब सुनते हैं राघव चैतन्य और प्रीतम की आवाज में एनिमल फिल्म का गाना। गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत जैम 8 का है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत

0: ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये

0: सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की

0: जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए कस्मे वादे फिल्म के इस गाने से। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में प्यासा सावन फिल्म का गाना, गीत संतोष आनंद का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं काश फिल्म का गाना। किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में, गीत फारूक कैसर का है, संगीत राजेश रोशन का।

अब सुनते हैं कुदरत का कानून फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें।

सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है।

साला गर्दा उड़ा दिया। अरे गर्दा उड़ा दिया। बेटा।

28 जून साल 1971, दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध

छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहाँ से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था।

नित्यानंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओं, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहां आपको बताते चलिए कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की ये डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेत्समनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया।

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया।

इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला

धन फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

आनंद एल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनुवेट्स मनु, रांझणा, तनुवेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

अपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओं, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को

के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमा घरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर, देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शिफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महकते नखरे।

यूं तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं। वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है। फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूं तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविधा के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविधा कार्यक्रम में आज समझ लीजिए कि होने वाली हैं सरगमी फुहारें। पूरे देश में या तो बारिश आ चुकी है या बारिश का है इंतजार, और आसमानी बारिश जब आएगी तब आएगी, पर विविध भारती से आज हो रही है पंचमी बारिश। आर डी बर्मन का जन्मदिन होता है 27 जून को, और आज हम पंचम को याद कर रहे हैं। विविध भारती के संग्रहालय में घुसे तो हमें मिला ये एक पुराना सा कार्यक्रम, जिसको संपादित करके आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सरगम के सितारे के नाम से बरसों पहले प्रसारित हुआ था, और आज इसे हम आपके लिए दोबारा लेकर आए हैं। तो सुनिए विविधा में सरगम के सितारे पंचम के नाम।
1: सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। सरगम के सितारे, लीजिए सुनिए संगीतकार राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गीतों पर आधारित कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग।

राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गीतों के अलावा विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त उन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग के अंश भी सुनवाएंगे जिनमें कुछ में राहुल देव बर्मन ने अकेले शिरकत की थी। इसके अलावा संगीत सरिता कार्यक्रम की उस विशेष श्रृंखला की रिकॉर्डिंग से लिए गए अंश भी आपको सुनवाएंगे जिस रिकॉर्डिंग में गायिका आशा भोसले, गीतकार निर्माता निर्देशक गुलजार के अलावा संगीतकार राहुल देव बर्मन ने भी भाग लिया था। तो आइए सुनते हैं आज के सरगम के सितारे संगीतकार राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गीत।

0: संगीतकार राहुल देव बर्मन और गायिका आशा भोसले ने।
1: आप सबको तो गवाते हैं
2: जी,
1: जब आप खुद गाना गाते हैं तब मैंने देखा है कि आप क्या क्या करते हैं। कहते आज नहीं गाऊंगा, मैं कल गाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं परसों गाता हूँ, परसों आएंगे तो कहेंगे मैं नर्सों गाता हूँ। आशा छोड़ दे, तू भी मत गा आज, कल करते हैं, परसों करते हैं।
3: बिल्कुल इसी तरह की हरकत है आशा जी, वो भी इसी तरह की एक फोक सी धुन है इनकी, मतलब गाने की रेंडरिंग पर बहुत कुछ मुनसर है
1: जी।
3: मतलब नॉर्मल गाना जिस सिचुएशन के, जिस तरह से आपने गाना है, इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो तो वो रेंडरिंग उसके बदल दीजिए तो गाने का कैरेक्टर बदल जाता है। ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था, और मैंने वो घंटी इसी के गले में बांध दी थी कि आप गा के बताओ। वो तो पिक्चर में भी इन्होंने गाया, वो गाना किताब फिल्म में है,
2: धन्नों
3: की आंखों में।
2: इसका कमाल
3: वो किस्सा, वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता या नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता ही होंगे।
1: ये ज्यादा बेटर है।
3: उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से।
1: उसमें एक गिटार का जो पीस है,
3: वो भी एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछे बताएंगे।
2: ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है, उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग।
3: अच्छा,
2: तो वो मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज अ कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ, जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा। तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए। वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था, सब लोग हंसते थे क्या लेके आए, इट्स अ नॉइज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन लोग खराब तरीके से भी,
3: मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट,
1: मतलब वही
3: मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट
1: वही था। वही
3: था। और तो कुछ भी नहीं।
1: उसी के ऊपर
2: कैसा गा रहे थे आप?
1: क्या
2: ऐसा था? चलिए गाना सुन के देखते हैं।